0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। क्यूपिप में सैकड़ों छात्रों ने स्कूलों में बुलियंग के खिलाफ मार्च निकाला। सेंट जोसेफ और लॉरेंट दे क्यूपिप के छात्र इस जागरूकता रैली में शामिल हुए। ये पहल उस घटना के बाद हुई जिसमें एक छात्र के साथ कक्षा में अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी छात्र निलंबित है जबकि पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है। बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2026 तक यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की है। रामदानी पर एसबीएम के पूर्व सीईओ प्रेमचंद मंगर के साथ मिलकर ध्यानवर्तम लिमिटेड को 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन दिलाने की कथित आपराधिक साजिश का आरोप है। मॉरिशस और अमरीका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगी। सरकार ने कहा कि इससे मॉरिशस को महत्वपूर्ण लाभ होंगे। वहीं इस समझौते पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जज इन चैम्बर्स ने खारिज कर दिया। अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में मॉरिशस के आर्टेमिस अकॉर्ड्स में संभावित शामिल होने,

और 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 20 वर्ष पूरे होने पर आप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर इसकी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवाओं तक इसका इतिहास पहुंचाने पर जोर दिया गया। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड ने एमबीसी के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों की गवाहियों को रिकॉर्ड करने की परियोजना जारी रखने की भी घोषणा की। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार छठी रात हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पश्चिम से पाए जा रहे अस्थिर बादलों के कारण स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पश्चिम तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। कभी कभी सामान्य वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 27। रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 7:45 बजे और शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। यौम जुम्मा मुबारक हो। नागद निसार अख्तर की आवाज़ को अपनी समागतों के बादल से कबूल करने का बेहद शुक्रिया। ये ORM Free रेडियो है और पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर, जहां इल्म इरफान के चराग रोशन किए जाते हैं। आप तमाम लोगों का समीमे कल्ब से इस्तकबाल करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगु एक ऐसे रिश्ते पर है, एक ऐसी सुन्नत मुतहरा पर है, जिसमें मोहब्बत की खुशबू, वफा की हरारत और इबादत की लताफत छुपी है। निकाह वो अक़द मुक़दस जो दो रूहों के दरमियान अहद उल्फत व तहारत कायम करता है। सामईन, इसी मुबारक सुन्नत मुबारका की फजीलत पर गोशे ख्याल फरमाएंगे। आइए सबाल खैर का बाकायदा आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर वदब समात फरमाइए।

सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने कलाम पाक की तिलावत समात फरमाई। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व ताला के लिए जिसने हमें अपने महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और दीन इस्लाम अता फरमाया। दरअसल इस्लाम ने जहां दूसरे शोबा हाय ज़िंदगी में मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई, वहीं शादी के मामलात और अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के मामले में भी अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पाने के तरीक़े इरशाद फरमाए। हमारे प्यारे आका सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार चीज़ें रसूलों की सुन्नतों में हैं, हया करना, इत्र लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। सामईन, तिलावत कलाम पाक के बाद ये हम्द शरीफ मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, इस्लाम एक ऐसा कामिल और अकमल दीन है जिसने इंसान के हर शोबे में उसकी रहनुमाई फरमाई। लिहाजा निकाह ही वो वाहिद जरिया है जो फितरी तकाजों को पूरा करने के लिए इस्लाम ने हमें अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह और ईमान दो ऐसी इबादतें हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और ता क़यामत रहेगी। निकाह बेहतरीन इबादत है कि उससे नस्ल इंसानी की बुका है। ये सिर्फ एक ताल्लुक नहीं बल्कि एक निज़ाम हयात है, एक इबादत जो इंसान को पाकीज़गी, ज़िम्मेदारी और सुकून के रास्ते पर ले जाती है।

0: सामईन जीवकार, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के जरिए निकाह की तरगीब व अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम से मोहब्बत करता है उसे मेरी सुन्नत अख्तियार करनी चाहिए और निकाह भी मेरी सुन्नत है। सामईन, बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गैर शादीशुदा होने का पता चला तो उसे शादी कर लेने के लिए मशवरे से नवाजा। सामईन, निकाह की फजीलत पर मजीद रोशनी डालने के लिए आइए सैयदुना गौसुल आज़म मस्जिद पोटलवी के खतीब इमाम मुफ्ती इंतखाब अहमद दामद बरकात गुमालिया की जबानी एक खताब समात कीजिए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है निकाह की अहमियत व फजीलत। निकाह इस्लाम में एक बहुत ही अहम और फजीलत वाला अमल है। इसके ताल्लुक़ से रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ानकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो उससे जो तुम्हें भाए, जो तुम्हें अच्छी लगे। और क़ुरान करीम में एक जगह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा सुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है तो जिसने इससे रूगर्दानी की वो मुझ में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करने की तरगीब दी है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नतों में से एक अजीम सुन्नत का नाम निकाह है। निकाह निस्फ ईमान है, निकाह निस्फ ईमान की तकमील है। अहादीस मुबारका में इसे निस्फ ईमान मुकम्मल करने का ज़रिया बताया गया है। जो कोई निकाह कर लेता है वो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है और बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो, निकाह करने से तुम्हारा आधा दीन मुकम्मल हो जाएगा। इस बात पे सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फिर आधा ईमान का क्या होगा? आधा ईमान आधा दीन तो ऐसा कि यूँ मुकम्मल हो गया कि हमने निकाह किया तो मुकम्मल आधा हो गया, और आधे ईमान का क्या होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आधे में तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी

मुकम्मल कर देगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बसा औकात बंदा क्या करता है, निकाह के बाद भी अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करता और दूसरी की तरफ रागिब होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह के बाद तुम तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करो, यानी निकाह के बाद भी तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करो। ऐसा नहीं कि निकाह के बाद तुम दूसरी की तरफ रागिब हो जाओ, क्योंकि आपकी बीवी आपके हुकूक को पूरा कर रही है तो फिर यह हद तो नहीं बनता कि आप किसी और की तरफ रागिब हो जाएं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन जाने कि मसला तो बनेगा ही, परेशानियां तो होंगी ही, जो कि आज के मुआशरे में अक्सर व बेशतर जगहों पे ये चीज़ें देखने में आती है। लिहाजा शरीयत जहाँ तक आपको ढील दे रही है आप वहीं तक रहें, उससे आगे ना जाएं। और अगर आप उससे आगे जाएंगे तो फिर यही होगा कि घर भी बर्बाद हो जाएगा और अपने सुकून को भी खो बैठेंगे। निकाह को इस्लाम में महज फितरी ख्वाहिशात की तकमील नहीं बल्कि एक इताअत और इबादत का दर्जा हासिल है। निकाह निगाह को बहकने से और शर्मगाह की हिफाजत करता है। इस तरह इंसान जिना और दिगर गुनाहों से बच जाता है। निकाह का एक बड़ा मकसद परहेज़गारी और तकवा हासिल करना है, क्योंकि ये हराम रास्तों से बचने का एक हलाल ज़रिया है। निकाह नस्ल इंसानी की बका है। निकाह के बाद नेक औलाद की ख्वाहिश आखिरत में निजात का ज़रिया है। निकाह एक जन्नती रिश्ता है, क्योंकि सबसे पहला जो निकाह हुआ वो जन्नत में हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे पहले जो निकाह हुआ वो जन्नत में हुआ। मालूम ये हुआ कि ये रिश्ता ये कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है बल्कि जन्नती रिश्ता है। सुभान अल्लाह। तो आप अगर दुनिया में निकाह कर रहे हैं सामेने किराम, तो आप ये जान लें कि आप दुनियावी रिश्ता नहीं निभा रहे हैं बल्कि जन्नती रिश्ता को निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि पता नहीं हम निकाह कर लेंगे तो उसका ख़र्चा कहाँ से आएगा। मेरे प्यारे, निकाह में अल्लाह सुबहानहु ताला ने बहुत बरकतें अता फरमाई हैं, बहुत बरकतें रखी है। चंद सहाबी किराम, एक मरतबा ये हुआ कि चंद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम लोग बहुत गरीब हैं, लिहाजा गुरबत की वजह से मैं निकाह नहीं कर सकता, मैं अपने आप का बोझ नहीं उठा सकता, तो मैं किसी और का नौनो नफका कैसे उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में खाने को सामान नहीं है, गुरबत में अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तो फिर मैं दूसरे के नानो नफका को कैसे उठाऊँगा। मेरे प्यारे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के इस बात को सुनने के बाद क्या इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम गौर से समात करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, मैं ज़मानत लेता हूँ कि तुम मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ, निकाह करने के बाद मालदारी की ज़मानत आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ली है। सुभान अल्लाह। निकाह के बाद मालदार होने की बशारत हुजूर ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। ऐसे तो इसकी बहुत फजीलतें हैं, उसमें से एक और फजीलत मैं आपके हाथों की दहलीज तक पहुंचा दूं। एक बुज़ुर्ग है जिनका नाम है फ़कीह अबुल्लैस समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला, वो लिखते हैं कि बग़ैर शादीशुदा शख्स जिनका निकाह नहीं हुआ है, अगर वो दो रकात नमाज पढ़ता है या पढ़ती है तो आम हालतों में उनको दो ही रकात का सवाब मिलता है, लेकिन जो शादीशुदा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, शादीशुदा मर्द या औरत अगर दो रकात नमाज पढ़े तो उन्हें 70 रकातों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रिज्क में बरकत का एक और बहुत बड़ा ज़रिया और वो है निकाह। लोग कहते हैं कि बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मैं निकाह कर दूँगा, लेकिन वो कहता है तुम निकाह तो करो, मैं पैरों पर खड़ा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और बसा औक़ात ये भी होता है कि लोग छोटी छोटी बातों में तलाक़ की नौबत आ जाती है और लोग तलाक़ दे देते हैं। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है

0: जो पता नहीं दुनिया की रानाइयों को देखकर अपने शोहर से तलाक लेती हैं। याद रहें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरतें बग़ैर किसी उज़्र के अपने शोहर से तलाक़ लेती है वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ते का नाम है जिसके बारे में अल्लाह सुबहानहु तआला ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरे निशानी में से एक निशानी है। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, परेशानी कहाँ से बढ़ती है कि आप एक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत को ज़िंदा करने जा रहे हैं और आप वहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो यकीनन ख़राबी लाजिम आएगी ही आएगी। हुजूर की एक अजीम सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं तो शरीयत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप शरीयत के ख़िलाफ़ करेंगे तो आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी ख़राबी लाजमी तौर पर आएगी ही आएगी। लिहाजा मेरे प्यारे सामयाने किराम, मैं आप लोगों से यही गुजारिश और इल्तिमास करूँगा कि निकाह को आम किया जाए, निकाह को आम करें, बुराई को ख़त्म करें। निकाह में अल्लाह सुबहानहु ताला ने बरकतें रखी है, उससे बहुत बरकतें मिलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मालदारी की बशारत दी हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लिहाजा निकाह करें, अपनी निगाह की हिफाजत करें और अपने सितर की भी हिफाजत करें, और ये निकाह ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमें इन सारी बुराइयों से बचने का एक वाहिद ज़रिया देता है। लिहाजा निकाह को आम किया जाए। हम मुसलमान हैं लिहाजा मुस्तफ़ा की नात वालों को बरात के दिन वाले भी नात ही अच्छी लगती है। सॉन्ग अच्छे नहीं लगते, गाने अच्छे नहीं लगते, हम मुस्तफ़ा करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, लिहाजा हम मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में से हैं, तो उनके ग़ुलाम को मुस्तफ़ा की नात ही अच्छी लगती है। लिहाजा नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने घर के प्रोग्राम का आगाज़ कराएँ। सॉन्ग्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो शादी के मौके पे लोग कराते हैं, याद रखें सॉन्ग से दिलों में निफाक पैदा होता है। निकाह एक इबादत का नाम है जिसमें नेकिया ही नेकिया है, और नेकिया इस तौर पर देखें कि जब कोई शख्स कोई इबादत करता है तो जब तक वो शख्स इबादत में मशगूल है उसको उसके बदले में नेकिया मिलती रहती है। नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब तक कि आप नमाज से फारिग ना हो जाएँ आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। कोई शख्स ऐसा है जो हज के लिए निकला वापस ना आ जाए जब तक के उसके आमाल में नेकियां लिखी जाती है। लेकिन मेरे प्यारे क़ुरबान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम सुन्नत पे कि जैसे ही आपने कहा मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, याद रखे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत को जैसे आपने ज़िंदा किया आपके नामा आमाल में अब नेकियां लिखा जाना शुरू हो गया। जब तक आपके निकाह में आपकी बीवी है आपके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस रिश्ता को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर करें। वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुबहानहु तआला हम लोगों को अमल खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: सुभानअल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामईन, कितने पुरमुअज़्ज़ और पुरअसर अल्फाज में मुफ्ती इंतखाब अहमद दामत बरकातुहू गुमालिया ने निकाह की हकीकत और उसकी रूहानी अहमियत को हमारे सामने रखा, जैसे दिल के दरीचों को खोल दिए। निकाह वो इबादत है जो बंदगी का मतलब सिखाती है और मोहब्बत को वफा के कालिब में ढाल देती है। दुआ है कि हम सब इस पैगाम को अपनी अमली जिंदगियों में ढाल सकें। आमीन। सामईन, अब ये अगला कलाम आपके नाम।

जो खर्चे होते हैं उनकी बरकत से तंगदस्ती दूर हो जाती है। अहादीस मुबारका में तो शादी के जरिए रिस्क तलाश करने का हुक्म भी दिया गया है और बीवी के जरिए रिस्क व माल की बरकत में वाज़े तौर पर बशारत दी गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान फकीर हो तो निकाह के जरिए वो उसे अपने फजल से गनी कर देगा।

सामईन मोहतरम, इसी कलाम के साथ इस नूरानी प्रोग्राम का मुकर्ररा वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाह की फजीलत पर गुफ्तगू फरमाई, जिंदगी की वो हसीन इबादत और इंसानी तमद्दुन की सबसे मजबूत बुनियाद। यही वो सुन्नत मुबारका है जो इंसान को नफ्स की बंदिशों से निकालकर वफा, मोहब्बत और अमानत के दायरे में ले आती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको निकाह की बरकतों को समझने, उन्हें अपनाने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन, इन्हीं कलमात के साथ अपने हम सफर निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: ब्रेकअप एक जन केवी रीते नक्की करी शके?

प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है भक्ति में बहुत शक्ति है, जिसने भी नाम धरा परमात्मा का उनके सभी विघ्न हट जाते हैं और उन्हें जीवन में दिशा भी मिलती है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

माता रानी शक्ति का स्वरूप है, जिसने भी नाम या है माता का, उनके सभी दुख दर्द अनिवारण हुआ है। माता रानी अपने भक्तों को शक्ति देती है, क्योंकि वह स्वयं शक्ति का स्वरूप है।

भाई कहा जाता है कि माता रानी हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं और किसी ना किसी रूप में अवतरित होकर हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। जो भी उनके द्वारे गए खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आते।

शक्ति। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, बस यही आशा है। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम।

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। रेडियो मनोरंजन RN3 के सभी हमारे श्रोता जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सुहाना सफर प्रोग्राम में आप सबों का मैं स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप स्वस्थ हैं और बस इस मौसम को देखते हुए चलिए यहां पर खूबसूरत पुराने गीतों का जो सिलसिला है इसको जारी रखते हैं।
1: You're listening RM3 Radio.
2: Ek tera saath, ek tera saath, humko.

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
1: तो प्रिय श्रोताओं, विनीता का साथ है रेडियो मनोरंजन पर RM3, जी हाँ, जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम है सुहाना सफर, जहाँ पर आप बने हैं हमारा हम सफर। सो थैंक यू सो मच जहाँ से भी आप सुन रहे हैं हमें। चलिए पुराने गीतों के इस सफर में हम सफर बन जाइए और आगे गुनगुनाते चले।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदिता और इस समय आप हमारे साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। और बस बातों बातों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं लेकिन गाने कहीं ना निकल जाए। चलिए इसी के साथ हम और आप साथ मिलकर कुछ ऐसे प्यारे यादें बनाते हैं इन खूबसूरत गीतों के साथ, वो यादें जिन्हें आप पहले भी जी चुके हैं।
1: झटका जुल्फ से पा

0: तो दोस्तों इन खूबसूरत गीतों के साथ आप विदिता का साथ दे रहे हैं. मौसम काफ़ी रोमांटिक है. चलिए रोमांस को जारी रखते हैं, कुछ रोमांटिक गीतों को ऐड करते हैं और इस सफ़र को बनाते हैं एकदम खूबसूरत.
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: रेडियो मनोरंजन आर्यन 3 पर वेदिता का साथ आप दे रहे हैं। पुराने गीतों का प्रोग्राम सुहाना सफर, इसमें जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं आपका स्वागत है। तो बताइए गाने कैसे लग रहे हैं आपको, आपके मूड के हिसाब से ही है ना। चलिए अगर आप खुश तो हम भी खुश।
1: आर्यन 3 रेडियो।

दोस्तों अगले गाने के साथ हम थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर. भूलिएगा नहीं, समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर, जहां पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
1: नमस्कार आदाब मुर्शिद टेलीकॉम की रीब्रांडिंग की जा रही है अब से आपके बिल पर माइटी होगा आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन है मुर्शिद टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया है मागाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं वो दुबई इटली इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है कल पोटली अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव लाने की मांग की इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट शाहीन दोहियाऊ अपना फैसला सुनाएंगी लिखने या पढ़ने से पहले एक बच्चा पहले बात करता है वो कुछ आवाज़ें करता है कुछ अल्फाज बोलता है और हाथों से

0: संचार करता है। ये हर बच्चे के लिए एक अहम चरण है जो अक्सर मुश्किलों से भरा रहता है। दुनिया के बाकी देशों की तरह मॉरिशस में भी बच्चे को बात करने में परेशानियां हो रही हैं। वो देर से संचार करने लग रहा है। वजहें अनेक हैं, उनमें से एक टेक्नोलॉजी है। बच्चे को बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन या टैबलेट दिया जा रहा है जो उनके विकास में मुश्किलें पैदा कर रहा है। विदेश में पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से भी गए हैं, 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बालाभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं। और युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई, कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई है, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी बताए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। B03 एन एच डी सी ला क्वाजे वाले दे प्रत्र में 67 साल के 67 years old जनाब मूसा अली बिकन, जो मूसा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज ढाई बजे इनके घर B03 एन एच डी सी ला क्वाजे वाले दे प्रत्र से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening RM Free Radio.

0: एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता RM3 रेडियो मनोरंजन पर। उम्मीद करती हूँ कि हमारे खूबसूरत गाने आपके दिल तक जरूर पहुँच रहे होंगे। तो देर न करते हुए चलिए अपने इस सफर को जारी रखेंगे खूबसूरत पुराने गीतों के साथ जो आप सुनते हैं आप ही के प्रोग्राम में, जो है सुहाना सफर।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

यादें ऐसी जिसे याद करके होंठों पे मुस्कान आ जाए, है ना। खूबसूरत पुराने गाने आप रेडियो मनोरंजन पर विदिता के साथ सुन रहे हैं। नमस्कार जी, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस जो है ना उसको धुशुम धुशुम करके भगाते रहिए, क्योंकि जब हम और आप साथ में होते हैं और ऐसे

पुरानी यादों को महका रहे हैं हम RM3 पर इन खूबसूरत पुराने गीतों के साथ. और अभी हमें कुछ और रिलैक्स करना है, कुछ और स्ट्रेस को दूर भगाना है. हमें अपने उन बीती लम्हों को याद करके फिर से उनको जीना है, उनको महसूस करना है और फिर इन्हीं यादों के साथ आगे बढ़ना है. तो चलिए आज अभी इसी वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर.

0: वो कसम।
1: हाँ जी, तो आज जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनको तो हम भूल नहीं सकते ना, तो चलिए जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे उनको जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

0: तो दोस्तों आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, देश परदेश, सात दिन के लिए थैंक यू सो मच। जाने का समय हो गया है, अब हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे हमारे एक और कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है सुहाना सफर। विनीता को आज्ञा दीजिए, आप सभी को हमारी ओर से शुभ दिन, नमस्कार।
1: RM3 Radio.

0: Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: दोपहर के 2 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार
7: नमस्कार आदाब लिखने या पढ़ने से पहले एक बच्चा पहले बात करता है वो कुछ आवाजें करता है कुछ अल्फाज बोलता है और हाथों से संचार भी करता है ये हर बच्चे के लिए एक अहम चरण होता है जो अक्सर मुश्किलों से भरा रहता है दुनिया के बाकी देशों की तरह मॉरिशस में भी बच्चे को बात करने में परेशानियां हो रही हैं वो देर से संचार करने लगते हैं वजहें अनेक हैं उनमें से एक टेक्नोलॉजी है बच्चों को बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन या टैबलेट दिया जा रहा है जो उनके विकास में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं वो दुबई इटली इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज़ जता रहा है कल पोटली अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट शाहीन दोहियाऊ अपना फैसला सुनाएंगी मॉरिशस टेलीकॉम की रिब्रांडिंग की जा रही है अब से आपके बिल पर माइटी होगा आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन है मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया है विदेश में युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई और कम अज कम 20 छात्रों की मौत हुई दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी बताए जाते हैं पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं

0: वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से गए हैं, 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बाला भद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Geet, Nritya aur Parampara.
3: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है, गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, गीत दिन भर हम सुनते हैं, नृत्य भी बहुत से लोग करते हैं, पर एक रुचि होना अलग बात हो जाती है, क्योंकि रुचि जब होती है तभी आप उस पैशन को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़ी हैं वे प्रिंटिंग प्रेस में काम करती हैं और साथ साथ में गीत गवाई के मंच को सजाती हैं, खुद की एल्बम भी बना चुकी हैं और गीत और नृत्य दोनों में अत्यंत रुचि लेती हैं। आइए हम आप श्रोताओं को मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं। आज की अतिथि हैं श्रीमती मीरा दीनू जी। मीरा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्ते, नमस्ते जी।
3: आप हमारे को बताएं कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हुए, 3 बच्चों की माता होते हुए, आप गीत से भी जुड़ी हुई हैं, नृत्य से भी जुड़ी हुई हैं, अपनी एल्बम भी बनाई है, पर गीत गवाई में भी भाग लेती हैं, ये सब कैसे?
4: ये मैं मेरा बहुत शौक़ था छोटा से, जब मेरा बहुत शौक़ है गाना, डांस करना, ये मेरा शौक़ है। तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ अपने आप से, प्रिंटिंग में भी काम कर लेती हूँ, घर पर भी संभाल लेती हूँ और गीत गवाई को भी अच्छी तरह से अपना साथ दे देती,
3: समय दे देती,
4: समय देती है।
3: पर आपने कहा बहुत अच्छे से समय निकाल पाती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक रुचि है गीत संगीत के लिए, तो उस रुचि को आपने कब पहचाना? बहुत छोटी उम्र में, या के जब बढ़ने लगी, या के जब आप गीत गवाई में भाग लेने लग पड़ी, कब से ये आरंभ हुआ? आपने बताया कि छोटे से, पर छोटी उम्र 3 वर्ष की भी हो सकती है, 10 वर्ष की भी छोटे ही कहेंगे, पर आपने कब से ये पहचाना कि मुझे गाना है और मुझे नाचना भी है?
4: नाचना भी है। छोटे से तो मैं गाती नाचती भी हूँ, क्योंकि बैठका जाती थी, उधर से मैंने सीखा।
3: बैठका में हिंदी भी पढ़ती थी?
4: हिंदी भी पढ़ती थी
3: जी।
4: और बैठका में शुरू हुआ नृत्य, गाना, और मैं कविता भी लिखती थी
3: जी।
4: हाँ, बैठका में इससे शुरू हुआ और कॉलेज में भी रुचि।
3: फिर आपने भजन वगैरह भी,
4: भजन कीर्तन सब साथ में करती थी।
3: किसके साथ?
4: गांव में, गांव में जब भजन कीर्तन होता था
3: जी,
4: तो अलग अलग गांव जाते थे, जब भागवत होती थी, भागवत होती थी तब जाते थे हम। और तब से जब गीत गवाई में रुचि तब आई, जब मेरे शादी के बाद, शादी के बाद कुछ काम शुरू करने का मन आया, तो जैसे कि मेरे बहुत रुचि थी गाना, डांस करना, तो एक चाची जो थी उसने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करूँगी, तुम मेरा साथ देना तो बहुत आनंद आएगा साथ में। तो मैंने ज्वाइन किया, पहली बार के लिए ज्वाइन किया उसको, और बहुत आनंद भी आया उसके ग्रुप में।
3: आपने गीत गवाई में जाने से पहले भी कहा कि छोटी उम्र से आप गीत गाती हैं, क्या आपने कोई शिक्षा भी ग्रहण की?
4: नहीं,
3: वैसे कोई गुरु जिसने आपको मार्गदर्शन दिया हो कि अब आपको ऐसे गाना है या ऐसे नाचना है या इस संगीत की ओर बढ़ना है?
4: हाँ, वो तो मेरा गुरु है अविनाश जाजू जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा गीत गवाई के बारे में
3: जी।
4: गीत गवाई का महत्व भी नहीं जानती थी।

0: में क्या कैसे गीत गवाए होता है और किस तरह से क्या मतलब है गीत गवाए का वो
1: आप
0: सब।
1: जब कह रही हैं कैसे गीत गवाई होती है, क्या मतलब है, तो हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा बताएं कि गीत गवाई आपके लिए क्या है।
0: मेरे लिए गीत गवाए जो है वो हमारे पूर्वजों का एक अलमोल तोहफा है जो हम अभी तक उसे जीवित रख रहे हैं। और मेरा मुझे लगता है कि मैं गीत गवाए को और भी आगे बढ़ा सकती हूँ
1: जी।
0: हाँ, कुछ नए अंदाज से भी, नए तरीके से,
1: नए अंदाज से पुरानी संस्कृति को संजोए रखना चाहते हैं, हमारी परंपरा से जुड़ा रहे जी।
0: हाँ जी, तो मैंने अपने गुरु से काफी कुछ सीखा है
1: जी।
0: गीत गवाए क्यों करते हैं? गीत गवाए करते हैं इसलिए हम अपने पहले तो हम अपने देवता देवी जो हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि आओ हमारे जो शादी विवाह संस्कार हो रहा है उसमें आए, तो आप अपना भाग दें, अपना आशीर्वाद दें ताकि सब ठीक से
1: अच्छे से पूरा हो पाए।
0: और जैसे कि हम महादेव का गीत गाते हैं और राम सीता का भी गीत गाते हैं
1: जी।
0: तो ये हम किस लिए गाते हैं? ताकि जो मतलब जो लड़का
1: वर
0: वधु है उन्हें ये सीख मिले कि कैसे एक शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाना है और उसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं, कैसे हम अपना गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं अच्छे से और सब ठीक से आगे बढ़ाना है जीवन को।
1: और उसके साथ साथ हम संस्कारों को भी
0: जीवित रखते हैं,
1: भी निर्वाह कर रहे हैं,
0: करते हैं। हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: अच्छा, पर जब आपने कहा कि मैंने एल्बम भी बनाई है अपनी, हाँ। तो वो किस विचार से?
0: एल्बम तो मैंने, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जब मैं गीत गवाई में जाती थी तो कभी कभी एक टुकड़ा आ जाता है, एक लाइन आ जाती है गीत का, तो हम वैसे भी मेरे एल्बम शुरू हुआ इसी तरह से, गीत गवाई में गीत गाते गाते एक लाइन आ गई, काहे दिलवाला गैला मोर सैया संगे, तो इस तरह से मैंने अपना एल्बम निकाला काहे दिलवाला गैला।
1: एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए उस एल्बम में से।
0: हाँ जी
1: जी
0: ठीक है।

0: ये विचार आपके मन में आया जब आप गीत गवाई में भाग ले रही थी, तब आपने अपना स्वयं का एक गीत निकाल लिया। तो उस एल्बम में कितने गीत हैं?
1: 5 गीत हैं मेरे लिए।
0: 5 गीत हैं और कोई दूसरा अंश जो हमारे साथ साझा करना चाहे?
1: हाँ जी
0: जी।

0: करे हुतके मार मार बगैचा में न मिलब राजा अंगूर के बगैचा में न मिलब राजा।
1: बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से उस गीत को प्रस्तुत किया, पर अपनी एल्बम बनाने के साथ साथ आप गीत गवाई में भी भाग लेती हैं।
0: हाँ?
1: तो आजकल तो शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत सी शादियां हो रही हैं, तो आप अपने कार्य को, अपने परिवार को और गीत गवाई को, तीनों को बैलेंस में कैसे रख पाती हैं?
0: वो
1: क्योंकि ये एक

0: जो गीत गवाई है वो तो पहले से ही 2-3 महीने पहले ही आ जाता होगा कि हमारे घर में शादी है, विवाह संस्कार है, तो आपको गीत गवाई के लिए भी आना है, हल्दी के लिए भी आना है और विवाह विधि के दिन भी आपको गीत प्रस्तुत करने हैं। तो सब कैसे मैनेज कर पाती हैं?
1: वो मैं एक महीना पहले से मैं अपना सारा प्रोग्राम को मैनेज कर लेती हूँ कि कौन गीत गवाया जाएगा, कौन हल्दी विधि जाएगा, ये सब मैं सब।
0: तो इसका जब आपने कहा मैं मैनेज कर लेती हूँ, इसका मतलब आपका एक अपना स्वयं का ग्रुप है?
1: हाँ, मेरा ग्रुप है, मेरा डांस ग्रुप।
0: कितने लोग हैं?
1: लगभग 12-13 से।
0: 12-13 लोग हैं।
1: हाँ, और अलग से भी हैं जिनको मैं काम भी देती हूँ, अलग से ग्रुप भी है।
0: मतलब एक ग्रुप आपका अपना है।
1: हाँ,
0: और दूसरे ग्रुप्स को भी संपर्क करती हैं।
1: हाँ,
0: जब आप स्वयं नहीं जा पाती हैं। हाँ, तो उनको भेजती हैं।
1: उनको भेजते हैं,
0: मतलब अपने काम को बैलेंस कर रही।
1: हाँ,
0: हैं। पर इसमें आपका परिवार कुछ सहयोग दे पाता है?
1: मेरा, मेरे परिवार में मेरे दोनों बेटे मेरे साथ देती हैं। एक जो है वो जाम्बी बजाते हैं और एक जो है लोटा बजाते हैं, और काफ़ी सहायता भी प्रदान करती हैं जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को मतलब संभालने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सब साथ देते हैं। हाँ,
0: तो ये आपकी रुचि के आधार पे आप ये कार्य कर रही हैं। पर आप ने पहले शुरुआत में कहा कि आप भजन कीर्तन से भी जुड़ी हुई थी, तो जीवन में प्रारंभ जो आपने किया गीत संगीत कविता लेखन भजन संगीत के साथ प्रारंभ किया, आपके पिता का प्रभाव था, माँ का प्रभाव था?
1: हाँ,
0: या परिवार के अतिरिक्त किसी का भी प्रभाव था?
1: परिवार में मेरे पिताजी जो थे कृष्णदत्त रामजतनी जी, वो हारमोनियम बजाते थे। मेरे दादाजी भी थे, हारमोनियम बजाते थे, और मेरे चाचा जी जो थे वो तबला वादक थे, और वो गीत भी लिखते थे मेरे लिए।
0: आपके लिए गीत लिखते थे?
1: हाँ।
0: तो स्वरचित गीत आपने अपने पिता से धरोहर में पाया।
1: हाँ।
0: जो आगे आप भी लिखती हैं।
1: हाँ।
0: अपने गीत, तभी तो आप एल्बम निकाल पाए।
1: हाँ,
0: तो अपने गीत लिखने के लिए भाषा सबसे हाँ। बड़ी बात होती है। आपके गीत संगीत में भाषा कौन सी प्रयोग होती है? जैसा कि आपने 2 अंश जो गाए वो भोजपुरी के थे।
1: हाँ।
0: क्या आप हिंदी का भी प्रयोग करती हैं?
1: अभी तो मैंने हिंदी के लिए नहीं निकाला कोई गीत
0: जी,
1: लेकिन
0: क्योंकि प्रभाव भोजपुरी का
1: भोजपुरी
0: गीत गवाई में भोजपुरी का
1: हाँ,
0: जुड़ाव रहता
1: लेकिन,
0: है।
1: लेकिन जो कीर्तन भजन जो है वो हिंदी में होती है, तो वो हिंदी में गाते हैं।
0: वो हिंदी में गाते
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ।
0: वो आपके पिता से आपने पाया
1: हाँ।
0: कि भजन संगीत जो है
1: हाँ जी।
0: सत्संग जो है
1: हाँ।
0: वो हिंदी में हो,
1: हिंदी में हो।
0: तो आप जीवन में भजन और सत्संग का प्रभाव कितना पाती हैं? क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है
1: हाँ।
0: हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। प्रभु, और जब गीत गवाई भी करते हैं तो हम प्रभु का ही नाम लेकर शुरू करते हैं।
1: हाँ।
0: चाहे वे महादेव की पूजा हो, चाहे वे देवी माँ को पुकारना
1: हाँ।
0: हो, धरती माँ की पूजा
1: हाँ।
0: हो, प्रकृति को भी हम जोड़ते हैं साथ
1: हैं।
0: में तो इसका प्रभाव जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में कहाँ तक पाती हैं आप?
1: ज़्यादातर तो कैसे कहूँ,
0: जब आप गाती हैं भजन तो अपने संस्कारों को संजो रही हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: तो
1: जी।
0: ये विशेषकर आप अपने परिवार में भी तो घर में पूजा प्रार्थना से प्रारंभ करती हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो यही हम संस्कारों की बात कर रहे हैं
1: हाँ।
0: कि भजन कीर्तन संगीत नृत्य भी हमारी संस्कृति का एक भाग है
1: हाँ।
0: इस पर
1: मैंने शुरू किया, तो पहले से शुरू किया, मैं रामायण गाती थी
0: जी,
1: बैठका में रामायण गाती थी। जहाँ जहाँ पर रामायण होता था वहाँ पर जाते थे हम, रामायण शुरू करते थे। और मैंने सीखा वाल्मीकि रामायण से,
0: रामचरितमानस तुलसी की नहीं,
1: वो बाद में थी,
0: वो बाद में आई।
1: वाल्मीकि पहले रामायण थी
0: जी,
1: जिससे मैंने

0: सीखा वो संस्कृत का था
1: जी।
0: क्यों संस्कृत का था
1: जी?
0: वो मैंने सीखा, फिर बाद में रामचरितमानस आए।
1: तो रामायण का प्रभाव आप अपने अंदर और अपने परिवार में, अपने समाज में कहाँ पाती हैं?
0: वो तो हम जब पूजा स्थल पर जाते हैं, जहाँ पर कीर्तन, दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पर हम थोड़ा सा कीर्तन भजन कर लेते हैं या रामायण भी कर लेते हैं। ऐसे तो हम शिवालय भी जाते हैं, तो हर सप्ताह यानी कि हर बुधवार को जाते हैं या सोमवार को जाते हैं, हर सप्ताह में एक दिन हम जाते हैं शिवालय वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा। हमारी टीम में भाई यूसुफ बैठे हुए हैं, साथ में दीपशिका सहयोग दे रही हैं और प्रोडक्शन सीट पर रत्नमाला जी हैं। तो एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर बातचीत जारी रहेगी।

0: एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से वे जान चुके हैं कि मीरा दीनू जी आज की अतिथि हैं हमारी। दीपशिका को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ढूंढ कर मीरा जी का ही गीत आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आपने उनकी आवाज़ में ये जो गीत सुना मीरा दीनू जी का ही गाया हुआ था। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी मीरा जी कि आप बचपन से गाती आई हैं, फिर नृत्य भी करती रही हैं, कब आपने सोचा कि मेरा पर्सनल ग्रुप होना चाहिए गीत गवाई के लिए? क्योंकि अन्य ग्रुप में आप जाती रही गीत गवाई के लिए, कब आपको ये प्रभाव पड़ा कि अब मुझे सोच लेना चाहिए कि मुझे अपना एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा?
1: वो तो मेरे पति जो थे उसने प्रोत्साहित किया कि क्यों ना तुम अपने अपने एक ग्रुप बना लेती हो, जो तुम नाचना भी जानती हो, गाना भी जानती हो, तो क्यों ना तुम्हारा एक ग्रुप हो।
0: जी
1: तब मैंने सोचा और जब शुरू किया तो मैंने कुछ सहेलियों के साथ शुरू किया, कुछ अपनी सहेलियों के साथ जो साथ में नाचते भी थे गीत गवाई में, तो उन्होंने सहयोग दिया और तब फिर से मेरा एक प्रोग्राम था MBC में गीत गवाई का, तो मैंने भाग लिया इधर MBC प्रोग्राम में।
0: जी
1: तब से तो बहुत मशहूर हो गई और ज़्यादा लोग मुझे फ़ोन करने लगे कि मेरे पास मेरे यहाँ गीत गवाए होगा। तब से मैंने बुकिंग शुरू किया और आज मैं यहाँ पर हूँ।
0: तो आपका अपना मीरा ग्रुप?
1: मीरा डांस ग्रुप
0: बना। उसमें आपको ग्रुप बनाने में कुछ कठिनाई हुई?
1: हाँ,
0: क्योंकि घर परिवार से तो आपको सहयोग मिल गया, पति की अनुमति मिल गई कि आप एक ग्रुप बनाएं, पर लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि कुछ वादन
1: काफी मुश्किल था क्योंकि मुझे अपना मतलब जो डांस करती थी मुझे ढूंढना पड़ा, उन्हें मतलब उन्हें डांस भी सिखाना पड़ा, गाना भी सिखाना पड़ा। बहुत मुश्किल काम था
0: हाँ। क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना
1: जो जो नहीं गाना नहीं जानते, हाँ, नहीं जानते गाना, नहीं नाचना नहीं आता, उन लोगों को मैंने प्रिपेयर किया।
0: तो आपने कुछ ऑलरेडी जो प्रिपेयर थे उनको क्यों नहीं लिया? वो नहीं आना चाहते, उनके भी ग्रुप होंगे।
1: नहीं, लिए मैंने कुछ जो प्रिपेयर हुए थे वो सहेलियों को मैंने लिया, उन लोगों को तब साथ में ज्वाइन करके।
0: और ये ग्रुप जो आपने बनाया अपना एक पूरा संचालित कर रही हैं आप, उसमें केवल आप लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली हैं, तो लॉन्ग माउंटेन के ही लोग हैं या के अन्य गांव शहरों के भी लोग हैं?
1: अन्य गांव के भी है, जैसे कि त्रियोले हैं, ईशा और कुतेज से भी है, वर्षिका और नेहा है, प्लेंडी पपाई से, और तेहू से मेरे एक लड़का है जो ढोलक बजाता है वो है अमन, और नरवेश भी हैं जो पाई से हैं, काफी दूर दूर
0: तो
1: से,
0: मतलब कहाँ पाई कहाँ कुतेज, काफी बड़े
1: नाम से
0: क्षेत्र से आप कवर कर रही हैं लोगों को अपने ग्रुप में। तो सब एक साथ जब प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है, तब भी जुड़ते हैं?
1: हाँ, तब भी वो मेरे यहाँ आते हैं, रिहर्सल करते हैं हम।
0: जी
1: जहाँ पर एक कंपटीशन होगा या किसी श्रेष्ठ कार्य में जाना होगा तो हम तब हम रिपीटिशन करते हैं।
0: तो ये अभ्यास कितना आवश्यक होता है आपके लिए? गीत आपको भी आता है, गीत उनको भी आता है, आपके ग्रुप की लड़कियों को भी आता है,
1: नहीं,
0: पर अभ्यास करना कितना आवश्यक है?
1: हाँ, आवश्यक है क्योंकि सबको एक सुर ताल में गाना चाहिए, सब साथ में गाना, साथ में बजाना, एक ताल होना चाहिए, ना कि एक आगे एक पीछे, सब ताल में होना चाहिए बराबर।
0: ताल इतनी आवश्यक क्यों?
1: आवश्यक है क्योंकि जब आप सुने तो एक मधुर मधुर आवाज में, मधुर ताल में आपको मतलब आपको वो जोश मिले,
0: वो लय आनी चाहिए,
1: वो लय आनी चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: क्योंकि जब एक तरफ कोई गाएगा दूसरा अपनी धुन में गाएगा
1: तो बैलेंस नहीं
0: हो पाएगा।

0: संगीत हमेशा मधुर होना चाहिए, ये आवश्यक है। पर मीरा जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि ग्रुप बनाकर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है?
1: जी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कल्चर में रजिस्टर्ड भी हूँ।
0: तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है ग्रुप को रजिस्टर करवाने के लिए?
1: मैंने सोचा कि मैं अपने ग्रुप को रजिस्टर करूँ ताकि जो मतलब विदेश का जब शो होगा तो हमें एक मौका मिलेगा।
0: जी,
1: मेरा बस यही लक्ष्य है कि मैं विदेश में एक प्रोग्राम, एक
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करूं
1: अपने लोगों के साथ। ये मेरा बहुत रुचि है मेरी।
0: आपकी अभिलाषा हो जो है कि अपने देश का गीत, अपने देश का नृत्य, अपने देश का ग्रुप लेकर विदेश में जाएं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है?
1: आवश्यक है।
0: तो आपने उसकी प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं?
1: प्रक्रिया तो पूरी कर चुके हैं
0: जी,
1: लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है
0: बाहर जाने का मौका। वो ईश्वर पर छोड़ते हैं, चलिए मौका आपको अवश्य मिले। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। पर ये जो अभ्यास है, मैं फिर लौटती हूँ अपनी ही बात पर कि जो अभ्यास है वो कितनी बार आप करते हैं एक महीने में?
1: वैसे तो हम अभ्यास इस तरह तो नहीं करते हैं, खासकर जब एक कंपटीशन होगा तब हम अभ्यास करेंगे
0: जी।
1: लेकिन जितना मतलब एक महीना तो में, एक सप्ताह में
0: जब गीत गवाई के लिए जाती हैं तो एक लिस्ट तैयार कर लेती हैं कि आज हम ये गीत गाएंगे?
1: नहीं जी,
0: इस जो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस होता है,
1: मैं वहाँ पर जब जाती हूँ वहाँ पर जो जैसे कि शुरू करते हैं, हमें ज़्यादा पता है कि कैसे ढोलक पूजा कौन सा गीत गाएंगे
0: जी,
1: बांधो धरती का गीत कौन सा गीत गाएंगे, और देवता देवी का गीत जो है वो
0: उससे शुरू करेंगे।
1: तो हमारा रूटीन हो गया है,
0: वो रूटीन बना हुआ है, उसको आप रूटीन को नहीं तोड़ती हैं। पर जब लोगों की भीड़ में आप नृत्य कर रही हैं गीत, तो उनकी ओर से भी कोई मांग होती है?
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: आप ये गीत
1: हाँ जी, हाँ जी, मांग होती है।
0: और उसको आप पूरा कर पाती हैं?
1: हाँ, हाँ।
0: कैसे?
1: वो जो भी वो गीत मांग करते हैं, जैसे कि ज्यादातर जुबेदालो तो लेके जाए।
0: हाँ, ये तो बहुत प्रचलित गीत है,
1: मशहूर
0: रंबा राम तोहल जी का।
1: हाँ जी, वो तो ज्यादा लोग मांग करते हैं तो हम गाते हैं, जैसे कि इलांगारो, पैक पैकू, ये सब
0: जी,
1: वो सब
0: जो प्रचलित गीत है। वो प्रचलित गीत के अलावा अगर एक मांग आती है और आपके पास उसके लिरिक्स नहीं है, तब आप क्या करती हैं? मोबाइल पर ढूंढती हैं, यूट्यूब पर जाती हैं, के किसी से उधार लेती हैं कि मुझे ये लिरिक्स दीजिए, या कैसे कर पाती हैं? क्योंकि लोगों की मांग आ चुकी
1: है। वैसे तो जैसे जितने भी शो गए हैं, जैसे लोग कहते हैं कि फिल्मी गाना भी मांगते हैं,
0: हाँ,
1: फिल्मी
0: तो उसके लिरिक्स आपके पास होते हैं?
1: हाँ, तो मालूम है जो गाना वो मांगते हैं, तो मुझे आगे से पता चलता है तो मैं गा लेती हूँ।
0: आप गा लेती हैं?
1: गा लेती हूँ,
0: लिरिक्स की कोई समस्या नहीं होती?
1: समस्या नहीं है।
0: अच्छा, अब मैं वापस जाती हूँ कि गीत गवाई के साथ साथ भजन संगीत नृत्य सब हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लोक संगीत क्यों आवश्यक है आज के समाज को बांधने के लिए?
1: लोक संगीत आवश्यक है हमारे लिए ताकि हमारे नवयुवक, नव पीढ़ी जो है वो आगे इस लोक संगीत को आगे बढ़ा सके, और हम जितने भी हमें आता है हम यहाँ पर हैं जो उनको प्रोत्साहित करें, उनको और बढ़ावा दें ताकि वो इस लोक संगीत को जीवित रखें।
0: जो गीत गवाई में गीत गाए जाते हैं वो लोक संगीत है,
1: हाँ?
0: कहीं भी प्रकाशित नहीं है,
1: हाँ?
0: पर सबको कंठस्थ हैं,
1: हाँ?
0: वो चर्चा जो है आप आगे बढ़ा पा रही हैं,
1: हाँ?
0: लोक संगीत की, लोक नृत्य की भी, क्योंकि लोक नृत्य में कुछ भी आप नाच सकते हैं, कोई उसमें मुद्राएं नहीं,
1: हाँ?
0: है, कोई उसमें स्पर्श,
1: हाँ?
0: पैरों का ठिरकन नहीं है, कुछ नहीं है, जिस तरह आप नाचना,
1: हाँ?
0: चाहें खुल के नाच पाते हैं,
1: हाँ?
0: इस पर आप क्या कहेंगी?

0: में तो
1: क्योंकि कोई बंदिश नहीं है.
0: नहीं, कोई बंदिश नहीं है.
1: जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, हाँ, कथक की बात करते हैं, उसमें बंदिश होती है,
0: हाँ,
1: कि आप कौन सी मुद्रा ले रही हैं,
0: हाँ,
1: हाथ इस प्रकार से उठना, हाँ, चाहिए, पैर इस प्रकार से हिलना चाहिए, पर लोक नृत्य में ऐसा नहीं,
0: नहीं
1: है.
0: नहीं, इसमें जो जब हम डांस करते हैं, जब परफॉर्म करते हैं, तो हम खुल के अपना
1: नाचते हैं,
0: खुल के नाचते हैं, अपना अपना मतलब अपने अंदर का मतलब कैसे कहूँ,
1: प्रवाह,
0: प्रवाह जो, जो है
1: वो बहता है,
0: वो बहता है, वो खुशी से बहता है.
1: जी
0: हाँ.
1: अच्छा, जब आपने कहा प्रवाह खुशी से बहता है, तो
0: हाँ?
1: एक बात मेरे मन में आई,
0: हाँ?
1: कि कभी होता है घर में कोई समस्या हुई है,
0: हाँ?
1: घर परिवार में कोई बड़ी अनहोनी हो गई,
0: हाँ,
1: है,
0: हाँ,
1: और आपने उस दिन गीत गवाई के लिए स्वीकृति ले ली है कि मैं आज यहाँ पर गीत गवाई पर जाऊंगी,
0: हाँ,
1: उस दिन आप किस प्रकार से मैनेज करती हैं?
0: उस दिन भी मैं अपने प्रॉब्लम को, अपने जो जो समस्या है उसको अलग रख के, क्योंकि मैंने एक शो लिया है, मुझे उसको पूरा करना है, और मैं अपने थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है कि
1: क्योंकि जो दिमाग है वो समस्या में उलझा हुआ है,
0: समस्या में उलझा हुआ है, तो उसको हम अलग से रख के अपने शो को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. मतलब हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं लगाने देते कि हमारी क्या समस्या है. हम हमेशा से हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं और खुशी से गाते हैं, ताकि लोगों को हमें कुछ पता ना चले कि हमारी क्या समस्या है. हम अपना प्रोग्राम बराबर करते हैं.
1: हाँ. आपने उसको अपना कार्यभार समझकर,
0: हाँ,
1: वो पूरा किया. तो ये पूरा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि दिमाग कहीं और उलझा,
0: हाँ,
1: होता है तो नृत्य की ओर ध्यान
0: नहीं दे पाते,
1: जोड़ना मुश्किल
0: हो पाता है.
1: जी
0: हाँ, लेकिन हम कर लेते हैं.
1: चलिए, बहुत, हाँ, अच्छा है. एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, आपने आनंद लिया गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में। मीरा दीनू जी की एल्बम जो है उसका टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी एल्बम के लिए एक बार फिर से।
2: धन्यवाद जी।
1: आपने बातचीत में हमें बताया कि आपके पिता, आपके दादा हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, गीत भी गाते थे, भजन कीर्तन भी करते थे। आपकी दादी गीत गवाई में जाती थी, तो आप उनसे प्रभावित होकर गीत गवाई में भी जाने लग पड़ी, नृत्य की ओर रुचि आपकी बढ़ी। तो बीच में माँ ने नृत्य कभी नहीं किया, पर दादी का प्रभाव रहा। ये हमारे सामूहिक कुटुंब जो हैं उनका असर है कि आज तो एकल परिवार हैं, पर सामूहिक परिवार जो थे जहाँ दादी, चाची, फूफू सब एक साथ रहते हैं, तो उनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी होता है और बच्चों पर भी होता है, क्योंकि हम एक साथ रहते हैं परिवारों में। आपने अपनी दादी से गीत गवाई में जुड़ना सीखा, गीत गवाई में जाती थी चाची के साथ, दादी के साथ। तो आपने ये जब ग्रुप बनाया तो उसमें भी कोई दादी, नानी, चाची हैं?
2: चाची हैं,
1: चाची हैं,
2: चाची हैं, और मेरी माता जी भी साथ में जाती हैं। वो गाती हैं लेकिन नाचती नहीं है।
1: तो ये एक अलग प्रभाव है कि दादी नाचती थी, माँ गाती है, पिता हारमोनियम बजाते थे, तो पूरा परिवार एक साथ जुट के कर रहा है कार्यक्रम। आप अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से लोगों को आपने जोड़ा हुआ है। गीत नृत्य की ओर आपका झुकाव है, क्या आपने कभी सोचा कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य की हम बात कर रहे थे, उसमें कोई भी जो पद है या ताल है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप खुल के नाच पाते हैं, पर शास्त्रीय नृत्य में तो बहुत नियम अनुसार करना पड़ता है। कभी आपका झुकाव हुआ, आप सोचती हैं कि मैं एक बार भरतनाट्यम या कथक की ओर भी बढ़ पाऊँ?
2: वो मैंने एक बार कॉलेज में नृत्य की थी, गुरु थे हमारे कॉलेज में
1: जी,
2: याद आ रहा है, एक बार मैंने सीखा, बहुत मन था भरतनाट्यम डांस सीखने का, और आशा करती हूँ कि आगे में मौका मिले जो हम भरतनाट्यम भी सीख पाए, ये हमारी

0: बहुत इच्छा थी।
1: पहले कुछ आर्थिक कमियों के कारण आप नहीं सीख पाए।
0: हाँ, कुछ आर्थिक
1: जो
0: कमियों
1: आपकी बातचीत में मैंने समझा।
0: हाँ, जी।
1: कि आप भरतनाट्यम में रुचि रखती हैं।
0: हाँ,
1: पर सीख नहीं पाई।
0: सीख नहीं पाई।
1: पर आज हमारे देश में ऐसी सुविधाएं हैं।
0: हाँ,
1: कि बहुत सारे स्कूल्स।
0: हाँ,
1: में सिखाया जाता है।
0: हाँ,
1: स्कूल के अतिरिक्त भी महात्मा गांधी संस्थान सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, जहां पर हम लोक नृत्य के अलावा शास्त्रीय नृत्य भी सीख सकते हैं।
0: हाँ, जी।
1: और आज तो इसके थ्योरी इतनी ज्यादा है, पुस्तकों में थ्योरी सीखकर और उस पर प्रैक्टिकल हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। आप भी सोचती हैं कि कभी समय मिला तो सीखूंगी?
0: समय मिलेगा तो जरूर जाऊंगी
1: जी।
0: हाँ, कुछ थोड़ा सा नृत्य सीखने के लिए, जो मुझे बहुत आनंद आएगा।
1: हाँ। नृत्य में आपकी विशेष रुचि है, संगीत तो आप एल्बम्स बना ही चुकी हैं।
0: हाँ।
1: भविष्य में आपका क्या सोचना है कि और क्या कर सकती हैं जो हमारी धरोहर है गीत गवाई, इसके लिए?
0: वैसे तो मैंने ग्रुप भी बना लिए, एल्बम भी निकाल लिए, और बस
1: अब पूरे ग्रुप के साथ भी कुछ जुड़ के कर काम करना
0: हाँ
1: चाहती
0: जी,
1: है?
0: हाँ जी, ग्रुप के साथ मैं और भी कुछ नया अंदाज से, कुछ अलग अंदाज से, कुछ नया प्रस्तुत करना चाहूँगी।
1: अपने लिरिक्स खुद लिखेंगी?
0: हाँ जी,
1: लिरिक्स खुद तैयार करेंगी?
0: तैयार करेंगी।
1: पर उनको एक विशेष रूप देने के लिए क्या आप किसी गुरु की सहायता या सहयोग लेंगी?
0: हाँ जी, मैं अपने गुरु जी से, अविनाश जादू जी से, उनकी सहयोग से ये कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत गीत सिखाया, अभी तक बहुत गीत सिखाया, और मैं गुरुजी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, अविनाश जादू जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज जहाँ पर मैं जाऊँगी तो सर उठा के मैं कुछ भी गा सकती हूँ।
1: तो आप शास्त्रीय संगीत की ओर भी जुड़ सकती हैं?
0: शास्त्रीय संगीत के ओर भी
1: जुड़ सकती हूँ। अच्छा, आज बातचीत में हमने जाना कि आज भी आप गीत गवाई के लिए जा रही हैं।
0: हाँ।
1: आज शुक्रवार का दिन है।
0: हाँ।
1: आप किस गांव की ओर जा रही हैं और टीम में कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं?
0: आज तो टीम में 10 लोग हैं, और वैसे तो हम गोंपो गांव जा रहे हैं।
1: गोंपो जा रहे हैं?
0: गोंपो जा रहे हैं आज।
1: और वहां पर लड़की का विवाह है या के किसी लड़के की ओर से जा रही है?
0: लड़के का विवाह है।
1: लड़के का विवाह।
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ जी।
1: तो क्या अंतर पाती हैं जब एक दुल्हन के घर जा रही हैं या एक दूल्हे के घर जा रही हैं? तो आपकी जो संगीत की लिस्ट है,
0: हाँ,
1: उसमें परिवर्तन?
0: हाँ
1: होता
0: जी,
1: है।
0: हाँ जी, क्योंकि लड़का का गीत तो अलग से है और लड़की का गीत,
1: उसमें राम को,
0: हाँ, ज्यादातर राम का गीत है, और जो लड़की का गीत है वो अलग से है,
1: वो पार्वती और सीता के आधारित होता
0: होगा।
1: जी,
0: हाँ जी, लक्ष्मी और सीता,
1: लक्ष्मी सीता।
0: हाँ जी।
1: तो देखिए, हमारी परंपराओं में कितना प्रभाव है हमारे ईश्वरीय रूप, चाहे वे शिव हो, पार्वती हो, देवी मैया हो।
0: हाँ।
1: या फिर राम सीता का उदाहरण लेते हैं, हम अपने संस्कारों से जुड़े पाते हैं अपने अवतारों को। तो ये एक बहुत विशेष बात है हमारी गीत गवाई में।
0: हाँ।
1: इस पर आपका विचार?
0: जब हम राम सीता का गीत गाते हैं या महादेव गौरी का गीत गाते हैं, इसमें
1: हम
0: से
1: आवाहन तो कर रहे हैं उनको जुड़ने का।
0: हाँ,
1: पर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी संस्कारों, हाँ, से जोड़ रहे हैं।
0: संस्कार ये मिलता है कि कैसे हम अपने उन्होंने अपने विवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं, क्या क्या कौन से मतलब कठिनाइयों से,
1: समस्याओं
0: से जूझ के किस तरह से उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाए।
1: तो आप इन गीतों के माध्यम से उनको वो संदेश दे पाते हैं।
0: दे पाते हैं।

0: और लड़का लड़की रुचि भी ले पाते हैं गीतों के माध्यम से, क्योंकि बैठ के जब उपदेश देते हैं तो बच्चे नहीं सुनते
1: नहीं
0: हैं
1: सुनते
0: पर
1: हैं।
0: गीत गवाई के माध्यम से आप वो संदेश उन
1: और
0: तक
1: वो
0: पहुंचा
1: सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हाँ जी,
0: क्योंकि उनको समझना है,
1: समझना है
0: जी
1: हाँ जी।
0: तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप हमारे जो नव युवक हैं, क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, हमारे नव युवक हैं, नव विवाहित लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगी कि गीत गवाई एक माध्यम है हमें उनको अपनी ओर खींचने का, कि अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने परंपराओं से जुड़ें, अपने घर परिवार से जुड़ें, पर आपकी ओर से क्या संदेश है कि आज जो भटक रहे हैं बच्चे, जो नव युवक इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए आप विशेष संदेश क्या देना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे संस्कार जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी के नव युवक कुछ हमारे संस्कार सीखते नहीं है, सीखते नहीं, तो इसलिए हमें हमें खुद इन संस्कारों
0: का प्रभाव है, मोबाइल का प्रभाव है, बहुत सारे अन्य चीजों का प्रभाव है,
1: अन्य चीजों का प्रभाव है, तो वो इतना समय नहीं दे पाते संस्कार के की ओर। तो हमें बहुत मतलब बहुत
0: सोच समझ कर
1: उन्हें इन ओर खींचना चाहिए, हमारी ओर खींचना चाहिए, हमारी संस्कृति की ओर खींचना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो है कितना सुंदर है और उन्हें हम किस तरह से निभाना चाहिए
0: जी
1: उन्हें। और मतलब हमारी संस्कृति जो है बहुत सुंदर संस्कार जो है हमारे, उनका प्रयोग हमें और आगे बढ़ाना चाहिए।
0: तो आपका कहना ये है कि अपने गीत गवाई के माध्यम से अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से आप उनको जोड़ना चाहती हैं, नव युवकों को जो भटक रहे हैं, आज नशे में हैं या ड्रग्स के प्रभाव में हैं, तो उनके लिए भी गीत निकालें जो के उनको प्रभावित कर सकें, अपने माता पिता की ओर, अपने परिवार की ओर, अपने संयुक्त परिवार की ओर, क्योंकि आज रिश्तों की बहुत कमी पाते हैं। एक घर में दो बच्चे होते हैं और अगर उसमें दो लड़के हैं तो एक बहन की कमी है, एक चाची की कमी है, एक बुआ की कमी है, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के माध्यम से रिश्तों को निभाना सीख पाएंगे। आपके गीतों के माध्यम से आपके नृत्य टोली के माध्यम से वो जुड़ पाएं, अपने परिवार को संजो पाएं, अपनी संस्कृति को मेंटेन कर पाएं। क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है
1: आजकल
0: आज के जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि प्रभाव दूसरी दुनिया का अधिक है और उस पर AI ChatGPT आदि का इतना अधिक प्रभाव है जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है, कृत्रिम मेधा है ना। कृत्रिमता कहाँ तक है जब हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है, हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, हमारी परंपराएं इतनी अच्छी हैं, सुगर परंपराओं के साथ जोड़ते हुए हमें हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है।
1: हाँ जी।
0: आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, गीत गवाई के माध्यम से आप संस्कृति को भी निर्वाह कर रही हैं, अपने कार्य के समय से निकाल कर आप गीत गवाई को भी संजो रही हैं, साथ ही साथ नृत्य में भी आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो संगीत और नृत्य से जुड़े रहने के लिए आप प्रेरणा दे रही हैं सभी को। चलिए, आपने बहुत समय निकाल कर आज हमारे स्टूडियो में हमारा सहयोग दिया, गीत नृत्य और परंपरा में हमारी टीम ने हमारा सहयोग दिया, जिस टीम में भाई यूसुफ हैं, दीपशिखा जी हैं, रत्नमाला मंगरू जी हैं, उनको भी हम विशेष धन्यवाद देंगे। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े, आपने आज के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा कि हमारी संस्कृति का निर्वाह कितना आवश्यक है, हमारी परंपराओं से जुड़ा रहना कितना आवश्यक है, और गीत गवाई एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हम इस धरोहर को संजोए रखें।

और संगीत नृत्य के साथ जुड़कर हम अपनी संस्कृति का निर्वाह अच्छे से कर पाएं। आज के लिए इतना ही। आप सबको श्रोताओं शुभ संध्या।

0: चेकियो टाइम इट्स एग्जैक्टली 3 पीएम आई सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ नमस्कार और आदाब
1: नमस्कार रादाब मुर्शिद में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं इस परियोजना की लागत $300 मिलियन यानी 14 बिलियन रुपए की है गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके उन्होंने मुर्शिद और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है एनवायरमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन इकोसुड द्वारा ले बुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है 15 जुलाई को स्थलों का दौरा भी किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके इस 17 जुलाई को ले बुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष

0: कैद्रस वालाइडू की सुनवाई रही। महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं। वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है। कल पूर्वी अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की। इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोहयाऊ अपना फैसला सुनाएंगी। विदेश में युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई। कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं। और लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। अब नए हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। क्लियर फोन नंबर एक वाकुआ में 87 साल की 87 years old श्रीमती गौरी भगवान, श्रीमती गौरी भगवान पैदाइशी नाम जीता, जो श्रीमती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल एक बजे इनके बेटे राजेंद्र भगवान के घर क्लियर फोन नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सीवेन चिनिया रोड गुडलैंड में 82 साल की 82 years old कुंवारी फुलमत मुकुन जो बिदवंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनके घर सीवेन चिनिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: नमस्कार, 17 जुलाई, हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। ऐसे हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि हर शुक्रवार को खासकर कानूनी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि एक ऐसा विषय लेकर आए जो अभी के समय में बहुत ही आवश्यक है। आजकल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में ये दो चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की बात करें तो ये तो हमारे निजी जीवन में भी एक अहम रोल प्ले करती है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसेस सिरुपा वाउगे जुड़ चुकी है, जो एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर है, साथ ही कम्युनिकेशन कोच है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनर है और मेटा कोच भी है। तो चलिए सिरुपा जी, आपका स्वागत हम करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और कम्युनिकेशन की बात करें सिरुपा जी, अभी के समय में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे पर्सनल लाइफ से लेकर हमारे प्रोफेशनल लाइफ तक। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि

0: कम्युनिकेशन होता क्या है?
1: थैंक यू सुमी जी क्वेश्चन के लिए. कम्युनिकेशन, कमिंग टू द वेरी बेसिक ग्राउंड, कम्युनिकेशन एक माध्यम है जहाँ पे दो पर्सन्स रहते हैं. एक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और दूसरे जो होते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं. ये जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, ये दरियाओं में से गुजरते हैं. वर्बल क्या होती है, जैसे कि आपकी इमोशंस, आप जो इमोशंस दिखा सकते हो, जो बोल सकते हो. नॉन वर्बल वो होते हैं जो आप बोल नहीं सकते हो, आपके इशारे, आपकी बॉडी पोस्चर्स, आपके हैंड जेस्चर्स. सो ये जो तीन माध्यम है, इस माध्यम के दौरान कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन है, सेंडर से रिसीवर के पास जाती है.
0: बिल्कुल, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, एक टू वे होता है कम्युनिकेशन. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है किसी रिश्ते में या जीवन के किसी भी पड़ाव पर, तो ऐसा होता है कि शायद कम्युनिकेशन वन वे हो गया है. और जब तक हम इन बातों को समझ पाते हैं तब तक हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं. तो किस तरह से हम इस कम्युनिकेशन को हमेशा इफ़ेक्टिव रखें, इस पर भी आने अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे. कम्युनिकेशन की बात अभी सुरूपा जी ने अच्छे से बताई कि इसका मतलब है कि इस तरह से हम अपने विचारों को, हम अपने भावनाओं को और इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं, और साथ ही स्पष्टीकरण के साथ यानी कि क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना अभी के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है. इस पर आप क्या कहेंगे?
1: आपने जो चीज़ बताई है कि कहीं ना कहीं पे अभी वन साइडेड ट्रैफिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग. कहीं ना कहीं पे आप अगर क्लियर नहीं हो आपके खुद के थॉट प्रोसेस में, वहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास यूज़ करने के लिए बहुत सारे के ऐप्स है, जैसे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप एक्स वाई जेड. कभी कभार होते हैं लोग आप सामने आके बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे रह के बात करना पसंद करते हैं. वो चाहते हैं कि आपके सामने आके अगर आप कुछ, आपको कुछ बोलेंगे, माइट भी आप ऐसा फील हो सकता है, आप इस चीज़ को ऑफेंडेड ले सकते हो, ऐसा आपके उनके बोलने के तरीका, आप कैसे बोलते हो उसको, आप विथ गुड हार्टेड आप ना भी ले सकते हो. तो लोगों का क्या है आजकल के टाइम पे कि वो प्रेफर करते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, कोई भी ऐप के थ्रू बोलना. बट कहीं ना कहीं पे मैं ये चीज़ फिर से इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, ये बेहतर है कि आप सामने आके बोलिए. आप जब कोई भी चीज़ सामने आके बोलेंगे, वो जो सुनने वाला, जो सुनने वाली जो पर्सन है, माइंड भी उसके दिमाग में अगर कहीं और आपके बारे में आपको लेके अगर कोई गलत फहमी है वो दूर हो सकता है. कभी कभार हम लिखने के दौरान हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ लिख, सिंगल स्टेटमेंट में हम लोग सब कुछ बोलना चाहते हैं. बट कभी कभार ऐसा होता है कि सिंगल स्टेटमेंट में हम हमारा जो इंटरनल, हमारा जो खुद का इमोशंस है वो
0: एक्सप्रेस
1: नहीं कर पाते हैं, जो आप कभी कभार सामने आके आप बोल सकते हो. तो ये एक चीज है जो जहां पे कम्युनिकेशन विद क्लियर थॉट्स सच में मदद करता है.
0: बिल्कुल, आपने सही कहा. आजकल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते तो है, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं, खासकर हमारे घर के बच्चों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, आजकल माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में जो है काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ गया है, दूरियां आ गई है. अगर पेरेंट्स सवाल करते हैं तो बच्चे जो है हिचकिचाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, या तो फिर सुनकर भी अनसुना करते हैं, या तो फिर काफ़ी घरों में या सोसाइटी में देखने को मिलता है कि उल्टा जवाब दिया जाता है, डिसरिस्पेक्टफुली बात किया जाता है. तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर वन वे ट्रैफिक होगा तो कभी भी आप अपनी बात को या अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस कम्युनिकेशन के गैप को दूर करना, ताकि ये हमारे रिश्तों में मिठास तो लाए ही, साथ ही हमारे जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी हेल्पफुल हो. चलिए अब हम आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर. जैसे हमने हम बताया कि आज हम कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं. पर्सनालिटी की बात करें तो वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को झलकाता है. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है?
1: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट्स ऑल अबाउट एक इंडिविजुअल के, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, मेरी बिहेवियर, मेरे बॉडी पोस्चर्स, मेरे हैंड जेस्चर्स, मेरी थिंकिंग प्रोसेस, मेरी थॉट प्रोसेस, मैं कैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल और खुद के इमोशंस को पब्लिक में एक्सप्रेस करती हूँ, ये सब कुछ एक पैकेज में आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये एब्सोल्युटली खुद के बारे में है, आपके खुद के लिए है कि आप खुद को सबके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो. इट्स ऑल अबाउट यू.
0: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है. कभी कभार हम सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आजकल ये भी कोर्स एक काफ़ी कॉमन हो गया है कि बहुत सारे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेते हैं. अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए, किस तरह से बॉडी के जेस्चर्स से अपने आप को जो है

0: इफेक्टिवली कम्युनिकेटर बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छा बात करना ही आना काफ़ी नहीं है, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारे जो है प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, जैसे कि हमने कहा, ये शायद आपके निजी जीवन में भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन हम कुछ अच्छा पहनते हैं या हमने अच्छे से तैयार हुआ है, तो हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना।
1: हाँ ज़रूर, आपने सही बताया है। कहीं ना कहीं पे हम लोग ये सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके प्रोफेशनल तक ही है। नो, डेफिनेटली नॉट। ये आपके पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास सब तरह के आइडिया है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू लॉन्च अ बिजनेस, आपको कोई आपके खुद के बिजनेस लॉन्च करनी है, आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास सब कुछ है, इवन फाइनेंशियली आप वेल सॉल्वेंट हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको आपके बिजनेस को पीच करना होता है किसी के सामने, वहाँ पे जाके आप कर नहीं पाते हो। आपके पास, आपको पता है कैसे करना है, अगर इंडिविजुअली आपको पूछा जाए तो आपको ए टू जेड सब कुछ पता है। आपको पता है कैसे उसको नेविगेट करना है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे उसको स्टॉपेज देना है, कहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, सब कुछ आपको पता है। बट आपको अगर सेम चीज़ कहीं 10 लोगों के सामने जब आपको पूछा जाता है कि आप आपके बिजनेस को पीच कर सकते हो क्या, वहां पे आप कहीं ना कहीं पे 10 कदम पीछे चले जाते हो, ये सोचते हुए कि नहीं, ये नहीं मेरे से होगा। बट यू नो, अल्टीमेटली अगर देखा जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास वो कैलिबर है, आपके पास वो क्या कहते हैं, क्वालिटी है। इट इज सब जस्ट सेल्फ डाउटिंग। आप खुद को कहीं ना कहीं पे सेल्फ डाउट करते हो कि आपसे वो नहीं हो पाएगा। सो हम लोग जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बात करते हैं, यही आता है कि ये कहीं ना कहीं पे आप से शुरू होती है, कहीं ना कहीं पे आप पे ही खत्म होती है। यू हैव ऑल द कैलिबर्स, आपके पास हर एक वो गुण, हर एक वो क्वालिटी है, जस्ट आपको नहीं पता कि उसको कैसे यूज एंड कहाँ पे यूज करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना अच्छा दिखते हैं, किस तरह से हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं, या फिर कितने कॉन्फिडेंटली एक काम को कर रहे हैं, ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। और अभी के लिए एक गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: चलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हर एक जगह पर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और चाहे आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो, तो आज का जो हमारा विषय है यही है कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सुरूपा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व के निर्माण की बात करें तो दोनों में क्या कनेक्शन है?
1: देखिए, कम्युनिकेशन अगर देखा जाए ये भी एक प्रोसेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी एक प्रोसेस है, बट जब हम कम्युनिकेशन के बात करते एक दरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत सारे, आप भी हैं, मैं भी है और 10 लोग हो सकते हैं। जब हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते वो एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इन एंड आउट वो इंडिविजुअल के बारे में होता है, चाहे उसकी लीडरशिप क्वालिटी बताइए, चाहे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए, चाहे उनके जो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में बोलते हैं जिसको, आपकी बॉडी पोस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, तो वो आज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो एब्सोल्युटली वो इंडिविजुअल के लिए होता है। बट अगर हम लोग इन दोनों के बीच का जो क्या बोलते हैं, जो अगर रिलेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे काम करेगा नहीं अगर आप खुद इवॉल्व नहीं हो, अगर आप खुद उस प्रोसेस के अंदर नहीं हो। आप आपके फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटी को आप क्या बोलते हैं उसको इवॉल्व करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपके थॉट प्रोसेस नीड टू बी वेरी क्लियर, आपको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे कि हम लोग अगर एक बंद कमरे में हैं, वहाँ पे आप जोर से चीख के बात नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपके एक तरीका होना चाहिए कैसे आपको बात करनी चाहिए। आप भी अगर आप क्राउड में हो, वहाँ पे अगर आप साइलेंट वे में बात करोगे तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है। तो ये जो चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉइस का पिच कहाँ पे कैसे होनी चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं पे अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन अगर देखा जाए, इट इज़ इंटरकनेक्टेड।

0: कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की बात करें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिरुपा जी ने काफ़ी अच्छे उदाहरण से हमें समझाया, क्योंकि अगर आप अपनी बात को सामने वाले के जो है अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके पर्सनालिटी में दिखता है, बिकॉज आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप झिझक रहे हैं, तो वो हाव भाव के जरिए जो है आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम है ये अपने आप में दिखाई देता है। तो यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपकी एक पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो डायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी पर झलकता है।
1: एब्सोल्युटली,
0: यानी कि दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही जुड़े हुए हैं। और कम्युनिकेशन की आज हम बात ही कर रहे हैं तो किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दुनिया भर में न जाने एक दिन में कितने सारे जो है न्यूज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, घर पर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं?
1: कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते, पहली चीज़ है आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो, कभी भी वन साइडेड सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वन साइडेड में ये किसी और की जजमेंट होती है। अगर आपको आपके खुद के थॉट प्रोसेस क्लियर करनी है, इन दैट रिगार्ड आपको पूरे एंटायर कोई भी टॉपिक का एंटायर इन एंड आउट पता होनी चाहिए, देन उसको आप आपके तरीके से प्रोसेस करने वाले हो। तो आपको अगर किसी और को ये चीज़ कन्वे करना है तो इट विल बी इन योर ओन वे, आप आपके तरीके से बताने वाले हो। सो अभी कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं ट्रेनिंग वगैरह लेती हूँ, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं सर्टेन टॉपिक के ऊपर। जब आपको उनको बोलोगे कि आप दो मिनट के लिए बात करिए, कहीं ना कहीं पे वो दो मिनट उनके लिए दो घंटे की बराबर होती है कि मैं कैसे क्या दो मिनट बात कर सकती हूँ। बट अगर देखा जाए, जो लोग इस प्रोफेशन में है मेरे साथ सहमति जताएंगे कि दो मिनट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बहुत कम टाइम है दो मिनट बात करने के लिए। दो मिनट किसी किसी को कभी कभार लगता है कि एक मिनट भी, दो तीन शब्द बोल के, दो तीन लाइन बोल के चुप हो जाते हैं। देन हम लोग वेट करते हैं कि हाँ आपके पास तो है, आपके पास आइडियाज है, आपको इस टॉपिक के बारे में पता है, आप और भी बोल सकते हो, बट बोलना नहीं चाहते। उनको कहते नहीं, यहाँ तक ही ठीक है, हमें हमें इतना ही बोलना है। एक्चुअली कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रोकता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप चाहते भी हो कि मुझे इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल सबके सामने उभर के निखर के आना है, कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं पे आपके खुद के थॉट प्रोसेस आपको पीछे ढकेल के लेके जाता है। आप चाहते हुए भी सामने आ नहीं पाते हो। आपके पास है आइडियाज़, आपके पास है, बट आप एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने पहले भी बताया, दो मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है बोलने के लिए। आप सोचते हैं दो मिनट, अभी दो मिनट में क्या बोले, आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप शायद एक दो लाइन टॉपिक के बारे में बोलेंगे, दैट्स ऑल फिनिश। तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम चाह के भी हमारे खुद के, जो जिसको कहते हैं ना, खुद को कहीं ना कहीं पे रोक के, खुद को कहीं ना कहीं पे समेट के चलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है। अगर बोलेंगे तो आगे वाला अगर इसको मिस सोचेगा, आगे वाला अगर मिस इंटरप्रिट कर दिया, देखिए मिस इंटरप्रिट अगर होना है वो ज़रूर होगा, इसको आप कभी रोक नहीं सकते, बट आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो इमोशंस है, अगर आप उस चीज़ को बाहर नहीं लाओगे तो आगे वाले को कैसे समझेगा?
0: बिल्कुल। और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि किसी किसी व्यक्ति के लिए दो मिनट बात करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जैसे क्लोज एंड कम्युनिकेशन कहते हैं ना, कि आपके बातों का एक शब्द में उत्तर देते हैं, यानी कि फिर वो कम्युनिकेशन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लाइफ को भी बहुत ये करती है, इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर हमने घर में बच्चों से पूछ लिया कि तुम्हारा दिन कैसे गया, तो बस एक शब्द में अगर ख़त्म कर दिया तो माता पिता को लगता है कि शायद वो बताना नहीं चाह रहा है या कुछ छुपा रहा है, और यहीं पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जबकि अगर आपसे पूछा गया एक बच्चे से कि आज का दिन कैसे गया, तो शायद बच्चा सुबह से शाम तक उसने स्कूल में क्या किया दोपहर तक, तो बताएगा कि आज ये हुआ वो हुआ, तो माता पिता को भी लगता है कि बच्चा जो है सारी बातें बता रहा है हमें।
1: इस चीज में मैं एक चीज बताऊंगी, मुझे सुनने वाले जो पेरेंट्स हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आफ्टर स्कूल कॉलेज होता है, एक्चुअली नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट बच्चा अगर एक साल का, एक महीने का भी है ना, तब से चालू होती है। पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, उनको खुद की ज़िंदगी, खुद के काम इसमें जूझे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं पे बच्चों को, इवन बड़े जो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं पे चीज़ें बैकफायर करके जाती है। कैसे? बिकॉज अगर आप आपके खुद के बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन रखते नहीं हो, जितना

0: जितना आपको जानना है आप उतना ही पूछते हो और बच्चा भी उतना ही आपको जवाब देता है. वो जो कैरेक्टर है ना कैरी फॉरवर्ड होता है. जब वो लोग बाहर जाते हैं, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो बाहर खुल के बात नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं. 10 लोगों के इवन फ्रेंड सर्कल में भी वो होते हैं, घुल मिल नहीं पाते, सोचते हैं कि नहीं छोड़ दो, जितना पूछा है उतना ही जवाब देनी चाहिए. कहीं ना कहीं पे ना हमारी जो क्या बोलते हैं जो फैमिली एनवायरनमेंट है वहाँ पे बात करने का प्लेस रहनी चाहिए. एज एन पेरेंट्स, एज एन ग्रैंड पेरेंट्स, हमें ये चीज़ हमें नाती हमें जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, खुद के जो बच्चे होते, पूछना चाहिए कैसे गए दिन, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, टीचर्स कैसे थे, यूनिवर्सिटी के सेशंस कैसे गए. सेम वाइस वर्सा बच्चों को भी पेरेंट्स से पूछना चाहिए. कहीं ना कहीं पे आज के टाइम पे एज आपने शुरुआत में मेंशन किया था, मोबाइल हैव टेकन दैट प्लेस. हमें अगर कभी कभार अभी अभी मतलब अगर देखा जाए इन जनरल, बच्चे मम्मी पापा को मैसेज करते हैं कि मुझे डिनर में क्या है आप बताओ. अगर डिनर में ये है वो भी मैसेज के दौरान, ऐसे नहीं कि मम्मी पापा को जाके पूछना, वो नहीं. मैं एक रूम से दूसरे रूम पे मैसेज होती है. तो ये जो चीज़ें ना पहले पहले हम लोग लेते नहीं, नहीं इट्स अ गुड थिंग, हंसी मजाक में लेते, बट एक्चुअली हंसी मजाक में लेनी नहीं चाहिए ये चीज़ें. समय ना समय ये लोग हमें आपके बच्चे आपको कहीं ना कहीं पे साइड कर रहे हैं. जितना जितना चाहिए उतना ही. अच्छा ठीक है, मम्मी से इतना पूछना है इतना ही, पापा से इतना पूछना है इतना ही. कहीं ना कहीं पे वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. कहीं ना कहीं पे बच्चे मम्मी पापा भी सोचते रहने दो, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, अब इससे ज़्यादा क्या, जितना पूछ जानना था मैंने हम लोग जान चुके हैं. सो कहीं ना कहीं पे ये पूरे जो एंटायर प्रोसेस है ये घर से चालू है. हम लोग स्कूल जाते, यूनिवर्सिटी जाते, विभिन्न तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी है अराउंड द आइलैंड. बट एज एन ट्रेनर मैं ये मानती हूँ कोई भी बेसिक जो लर्निंग है वो घर से चालू होती है. आप कहीं पे भी चले जाओ, एट इनिशियल फेज में आप यू विल बी स्ट्रगलिंग बिकॉज वो कम्फर्ट जोन से बाहर आना तभी पॉसिबल है जब आपकी एक फ्रेंडली एनवायरमेंट विद इन द हाउस विथ योर पेरेंट्स, विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, सभी के साथ. अगर वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है ना, आप कहीं पे भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप यू विल बी बैक टू स्क्वायर वंस अगेन.
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे में हम बच्चों को सोचते हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए या उन्हें बोलने नहीं देना चाहिए, या फिर अगर किसी एनवायरनमेंट में बच्चा अगर जबान चला रहा है या उल्टा बात कर रहा है तो हम इसे मजाक में लेते हैं, अरे छोटा है सीख जाएगा बाद में, बड़ा होगा तो सीख जाएगा. नहीं, अगर बच्चा अभी कुछ है जो उसमें कमी है तो शायद उस कमी को हमें अभी ही रिकग्नाइज करके उस कमी पर काम करना चाहिए, या तो अगर उस बच्चे में किसी तरह का जो है बिहेवियरल इशू है तो उस इशू को अभी ही हमें टारगेट करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. क्योंकि समय के साथ जब वो आदत बन जाती है तो उस आदत से निकलना फिर उस बच्चे के लिए मुश्किल होता है.
0: जैसे कि रिसेंटली आप देखिएगा कहीं कहीं पे बच्चे डिप्रेशन में इस उम्र में, एट द एज ऑफ 8-9 वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी इश्यूज होती है. देन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, नॉट इन मॉरिशस, अराउंड द वर्ल्ड बुलिंग का एक चीज़ें आई है. बच्चे बुल्ड होते दूसरे के दौरान, कोई और एक बच्चा. ये एक्चुअली जो बुलिंग चीज़ है ना ये वाइसी वर्सा है. कैसे वाइसी वर्सा है, जो कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट है बिकॉज उसको किसी ने कभी रोका ही नहीं, और जो ये चीज सहन कर रहा है कहीं ना कहीं पे उसने कभी वॉइस आउट किया ही नहीं. तो कैसे कभी कभार स्कूल में से किसी ने कुछ बोल दिया, उसने रिवर्स उल्टे में कुछ उसको बोला ही नहीं, अच्छा छोड़ो जाने दो जाने दो. वो जाने दो के प्रोसेस में एट सर्टेन पॉइंट टाइम के बाद क्या होता है कि वो उस एंटायर प्रोसेस में इनगल्फ हो जाता है, वो कभी उस प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ पाता है. देन जब हम लोग पेरेंट्स, एज एन पेरेंट्स जब आप पूछते हो कि तुम इस कब से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, देन ही और शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं मम्मा बहुत दिन से ये प्रॉब्लम था बट मैं कभी आपको बोल ही नहीं पाई, मैं कभी आपको बोल ही नहीं पाया. तो ये जो प्रोसेस है ना कहीं पर आपकी कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं पे आप बोल नहीं पाए और जो कर रहा है किसी ने उसको कभी रोका नहीं,
1: तो ये बहुत ज़रूरी होता है. बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जो भी गलत आपके साथ हो रहा है उसको चुप रहकर सहकर आप सामने वाले को और बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी भी क्षमताओं पर जो है आप डाउट कर रहे हैं कि मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ. और ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में हमें कभी कभार देखने को मिलती है या हम पर भी बीतती है. तो हमें सही समय पर सही निर्णय लेना ना, सही टाइम पर सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है.
0: इवन जो बुलिंग के जो चीज़ें होती है ये भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. किस लिए मैं बता रही हूँ, ये जो बच्चे जो कोई भी बुलिंग करते हैं, एक चीज़ है कहीं ना कहीं पे वो लोग उनके जो एनवायरनमेंट है घर के अंदर उनको इफेक्ट करके जाता है. कहीं ना कहीं पे वो

0: घर पे बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जब पेरेंट्स एज एन पेरेंट्स, जब वो लोग पेरेंट्स के पास जाके वो चीज़ बता नहीं पाते और वेन दे आर नॉट वेल अप्रिशिएटेड, वो जो गुस्सा, वो जो एन्जाइटी, वो बाहर आके दूसरों के ऊपर निकलता है. तो ये जो एक्चुअली दोनों साइडेड अगर देखा जाए ना, बच्चे, दोनों बच्चे जो कर रहा है और जो सहन कर रहा है, दोनों साइड में अगर देखा जाए, दे आर अफेक्टेड बाई द सिस्टम इट्सेल्फ. और ये सिस्टम आपके खुद का घर है.
1: जी, हमारे पहले कॉलर से मिलते हैं. हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है.
2: हेलो, नमस्ते आप दोनों बहन जी को.
1: नमस्ते भाई जी, कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ बहन जी.
1: जी,
2: तो कम्युनिकेशन के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ.
1: जी,
2: कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. क्योंकि बात जो है नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आना जाना चाहिए.
1: जी,
2: जैसे कि चाहे कारखाने में मजदूर से मालिक तक, चाहे देश के लिए राजा और प्रजा तक, तो और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, तो इनके बारे में मैं, मेरा विचार से, अगर बचपन से मेहनत करेंगे, विद्या सत्संग जरूरी है, जब जीने की कला आप सीखेंगे, तो आप कहीं पर जाकर अच्छी तरह से जब बात करेंगे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक से ऊंचा, अपने हाथ को इधर से उधर करेंगे और आपका उच्चारण भी ठीक रहेंगे.
1: जी,
2: तो ये सब बहुत से लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग विद्वान भी है, लेकिन कुछ लोग कम पढ़े हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपनी भाषण, अपनी प्रवचन करते हैं. धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे मौका दिया.
1: धन्यवाद भाई धनेश्वर जी. और आज जो है हम कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं. समय हुआ है कि एक और गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाएं.

0: सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और आज हम कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। और सुरूपा जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और सभी फैक्टर्स क्यों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है?
1: पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअलिटी के ऊपर जब आती है, आपकी स्टेज अपीयरेंस, आपकी बॉडी पोस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ इसमें अकाउंटेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, बट आप अगर कॉन्फिडेंट एनफ नहीं हो, देन आप सेम चीज़ ऑन अ पोडियम आप बोल नहीं पाओगे। आप अगर, आपको अगर लाइट कैमरा से कहीं ना कहीं पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास उस विषय के बारे में नॉलेज होने के बावजूद भी आप पोडियम में खड़े नहीं रह पाओगे। अगर आप आपकी बॉडी पोस्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर्स क्यों मैटर करते हैं? फॉर एग्जांपल, आप टॉल हाइटेड कोई खड़े हैं, अगर वो श्रिंक शोल्डर के साथ स्टेज में खड़े हैं, वो डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आपका स्टेज अपीयरेंस मैटर्स अलॉट। अगर आपके हैंड जेस्चर के बारे में बात करते हैं, हैंड जेस्चर आपको कैसे, कहाँ पे आपकी हैंड्स यूज करनी चाहिए, कैसे, कभी कभार होता है जब हम लोग बात करें, टू बी वेरी पर्टिकुलरली एंड टू बी वेरी प्रिसाइजली, हम बोलने के टाइम पे किसी के और पॉइंटेड फिंगर बात करना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ कुल मिला के एक पैकेज के दौरान आता है। इट्स अ पैकेज, होलसम पैकेज फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी मान लीजिए आप स्टेज में खड़े हैं, आप कोई विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका स्टेज का यूज़ कैसे होने चाहिए? आप अगर सेंटर में खड़े हैं कि वहाँ से शुरू से अंत तक आप वहाँ पर नहीं खड़े रहना चाहिए, आपको अगर स्पेस, बड़ा सा स्पेस दिया गया है, तो आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्पेस होना चाहिए। बट यूज़ ऑफ द स्पेस कैसे होनी चाहिए? बिकॉज आप अगर, फॉर एग्जाम्पल, आपको पोर्टेबल माइक दिया गया है बोलने के लिए, आप चल रहे हो, आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपकी जो बातें, कहीं ना कहीं पे आपकी जो शब्द क्लियर नहीं रहेगी। तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं पर्पसफुल मूवमेंट, आपको कब मूव करना चाहिए, कौन से सेगमेंट में मूव करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक कोट, आपको कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट देना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन विल प्ले द रोल। जैसे कि आप एकदम साइलेंट में बात करोगे, शायद आपका स्टेटमेंट बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बोल्ड है। अगर आपकी वॉइस बहुत कम है, अगर आप उसके ऊपर कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करते हो, कहीं ना कहीं पे आपका वो बोल्ड स्टेटमेंट फीका पड़ जाता है। कहीं ना कहीं पे आपको कोई स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट देना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मूवमेंट करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी जो ऑडियंस रहती है सब आपके, आपको देख रहे हैं, उनसे और जानना है कि आप कैसे आपका एंडिंग करने वाले हो। सो ये जो पूरा, जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, ये सब कुछ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। आप एक को छोड़ के दूसरे को लेके काम नहीं कर पाओगे, आपको हर एक चीज़ को एक समेटना है। करने के बाद आप देखोगे, अल्टीमेटली आप जब ये एंटायर प्रोसेस में घुसते हो, देन अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
0: बिल्कुल। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि हर एक मूव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। क्योंकि एक बात अगर आप किसी घर ही में चले ले लेते, हमें अपने किसी बड़े बुजुर्ग से बात करना है, तो ऑब्वियसली उनसे बात करते वक्त हमारा टोन अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम अपनी बातों के ज़रिए उनकी इंसल्ट कर रहे हैं या उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब वहीं पर अगर हम छोटों से बात कर रहे हैं, तो हमारे बातों में वो इमोशन होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम उसे डांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इमोशंस, ये सारे इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के साथ ये तभी इफ़ेक्टिव होते हैं आप सही समय पर सही मैसेज अपने बातों के ज़रिए दे रहे हैं।
1: बराबर है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया घर पे, आप हम जिस टोन में एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, बाय यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे के साथ बात करेंगे, सेम टोन में हम लोग एक छोटे प्री प्राइमरी बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते। लाइक इन शॉर्ट, अगर आप बोलेंगे भी, उनको नहीं समझेगा, उनको लगेगा कि मम्मी पापा गुस्सा ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप देखिए आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना मैटर करता है। कहीं ना कहीं पर अगर कभी कभार होता है कि हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, बट वॉइस के दौरान बहुत ज्यादा होता है कि आगे वाले को इफेक्ट कर जाता है, कि शायद आपकी वॉइस है ही वैसी, आपको कुछ, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाओगे, बट आप कोई भी चीज अगर आपको बताना है, आप थोड़ा सा अगर वॉइस हेवी करते हो, तो आगे वाले को ऐसा लगता है कि आप

0: रूडली बात कर रहे हो, बट एरोगेंट हो, कहीं ना कहीं पे आप नहीं हो, बट कहीं ना कहीं पे वो दर्शाता है कि हाँ भाई उन्होंने तो एरोगेंटली मेरे से बात किया है. तो कहीं ना कहीं पे आपका जो ये वॉइस है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन जो हम लोग बोलते हैं, मैटर्स अ लॉट.
1: एग्जैक्टली,
0: बिकॉज आप अगर ऑफिस में काम करते हो, इट्स अ टीम वर्क, तो वहां पे अगर आप एकदम से गुस्से में बात करोगे, अगर हैवी वॉइस में बात करोगे, जो सिंपल साधारण काम है, कहीं ना कहीं पे वो होता नहीं है. लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वो बॉस है करके कि हमेशा गुस्से में बात करना है, ये भी आपको देखना चाहिए. अगर आप एकदम धीमे से बात करोगे तो आगे वाला ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि इनसे क्या सुनना, इनको तो खुद में कोई दम नहीं है. तो आपका जो वॉइस है एक्चुअल में मैटर्स अ लॉट.
1: एग्जैक्टली, और कभी कभार ये हमारे बात करने के तरीके से हमारे काफी रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं.
0: बराबर है, बराबर है.
1: बहुत बातें, मतलब कि कभी कभार बोलने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं. और जैसे आपने कहा कि सभी चीज़ों की शुरुआत घर से होती है, तो घर ही पर अगर हम देखें तो हम जब अपनों से बात करें तो वो भी एक तरह का लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनैलिटी को और हमारे इमोशंस को दर्शाता है. तो अगर अभी से अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर बात करना शुरू करें तो कहीं कहीं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे अंदर आ ही जाएगा. क्योंकि अगर घर ही पर अगर हम बात करते वक्त, शायद अभी तक हम ऐसे बात करते थे कि सामने वाले के बारे में हम नहीं सोच रहे, जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं. लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर अपने हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाए तो शायद ये हमारे रिश्तों को भी सुधारेगा. और जब घर से बाहर हम प्रोफेशनल फील्ड में अगर लोगों से बात करेंगे तो वहाँ पर भी वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा. चलिए एक और श्रोता है, उनसे मिलते हैं. हेलो, नमस्कार.
2: नमस्ते
1: धनी जी, आपका स्वागत है.
2: जी, मेहमान को भी नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: देखिए मैं बोलूंगा
1: जी
2: कि परिवार में आमने सामने मिलकर नजरें मिलाकर बातें करना ये बहुत अच्छा है.
1: जी
2: देखिए, जैसे बहन जी ने बोला कि आजकल मोबाइल द्वारा काम निकाल लेते हैं
1: जी,
2: बिना देखे. एक ही बच्चे अपने कमरे में है, माँ से मोबाइल द्वारा बात करेंगे घर ही में, ये ठीक नहीं है. और हमेशा सच्ची बात बोलना चाहिए, जो सच है, नजरें मिलाकर एक दूसरे को देखकर प्यार से बोलना, ये घर में परिवार में बना रहता है
1: जी.
2: एक दूसरे से मिलकर, और नहीं तो और झूठी बात न बोलें. झूठी बात बोलने से परिवार में अनबन हो जाता है. यहाँ के जैसे हो सकता है

0: सोचना। हमारे जीवन में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया।
1: एक चीज सही है, इवन हमारे जो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने एक चीज सही बताया कि जो बोलना है आंखों में आंखें डाल के बोलो। अगर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, उस फील्ड में आप जो प्लेस है, आप जैसे बात करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका जो प्लेस है, इन अ सेंस आप अगर ऑडियंस के साथ मिलके बात कर रहे हो, आप अगर ऑडियंस को फेस करके बात कर रहे हो, तो आपका आई कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट। जैसे कि आप वॉल के और देख के ऑडियंस के साथ बात नहीं कर पाओगे। आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आपको ऑडियंस के और देख के, आपको ऑडियंस के आंखों में आंखें डाल के बोलनी चाहिए। आप ऐसे खड़े हो, आप वॉल के और देख के बात नहीं कर पाओगे, आपको ऑडियंस के और देख के। बट कहीं ना कहीं पे लोग झिझकते हैं, कहीं ना कहीं पे ऑडियंस देखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल इंडिविजुअल, कोई बड़े से बड़े अच्छे वक्ता वो भी भूल सकते हैं। अगर हो सकता है आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, बट ऑल ऑफ अ सडन आप जब लाइट देखते हो, लोग देखते हो सामने, आप भूल जाते हो बोलना क्या है,
0: कॉन्शियस हो जाते हैं।
1: यह एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने भी मेंशन किया है, जो आज के टाइम पे, हाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे भी था, प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऐसी नहीं है, बट अभी ज़्यादा इसलिए है बिकॉज हमें बहुत सारे ऑप्शंस अभी रेडीली अवेलेबल है। हमारे दादा परदादा के टाइम पे व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, ऑरकुट नहीं था। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उनकी सराउंडिंग्स में से मिलती थी। अभी हमें मॉरिशस बैठ के यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है विद इन फ्यू सेकंड्स हमें पता चलता है। कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या चल रहा है वो किसी और के थ्रू पता चल रहा है। माइट बी अ जर्नलिस्ट, माइट बी अ टीवी रिप्रेजेंटेटर, ये जो दरिया है उनके थ्रू पता चलता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, कहीं ना कहीं पे 50% करेक्ट, 50% इनकरेक्ट। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कहीं ना कहीं पे कहते हैं ना कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। फॉर एग्जांपल कोई आके कहे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, बट इसको मिसलीड, मिस इंटरप्रिट किया गया, दैट्स वेयर द कम्युनिकेशन गैप इवेंचुअली टर्न्स अप। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंपली आपके लिए नहीं है, इट्स हैपनिंग एक्चुअली अराउंड यू। इसीलिए कहीं ना कहीं पे बोलते कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लाइफस्टाइल है। ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये एक दिन का खेल नहीं है, दो दिन का नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये जब आप प्रैक्टिस में डालोगे, आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद देखोगे इट्स अ लाइफस्टाइल। एंड एक टाइम के बाद आप इससे और एक कदम ऊपर जाना चाहोगे कि हाँ मैं कैसे खुद को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लोगों के सामने बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल सही, जैसे आपने बातों में शुरुआत में बताया कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है या प्रोफेशनल फील्ड में जाने वाला होता है या किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनने वाला है, तब हम सोचते हैं कि बच्चे को प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाए या इसके बारे में बताया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि यह हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। तो हमें यह कम्युनिकेशन की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, यह घर ही से रोजमर्रा के जीवन में हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अच्छे से हम तभी तैयार हो जब हम घर से बाहर जा रहे हैं। शायद अपने आप को अच्छे से मेंटेन हम घर पर भी रख सकते ताकि वो हमारी आदत बन जाए और अनकॉन्शियसली हम उसे फॉलो करते जाए। चले, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म होने को चला। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एज अ इन द फील्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ लाइफस्टाइल। ये आपकी लाइफस्टाइल बननी चाहिए। आपको अगर खुद के ऊपर रियली काम करना है तो अभी से चालू करिए। डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम, देर इज नो करेक्ट टाइम। वो शुभ मुहूर्त कभी भी नहीं, शुभ मुहूर्त अभी से है। तो खुद के ऊपर, हर एक आदमी में फ्लॉ है, हर एक इंडिविजुअल में फ्लॉ है। अगर आपको आपकी फ्लॉज पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको आपकी फ्लॉज पता नहीं है देन टेक सिक हेल्प, गो फॉर अ कोचिंग, गो फॉर अ डू सम ट्रेनिंग सेशंस, जहाँ पे आपको खुद की जो खामियाँ हैं, जो नेगेटिव है साइड्स है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बिकॉज एज एन प्रोफेशनल एज एन इन पर्सनल लाइफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट सच में बहुत मदद करता है।
0: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिरूपा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी। आपको हम शुभ दिन कहेंगे और धन्यवाद कहेंगे। और जाते जाते हम हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें तब नहीं करना है जब इसकी जो है आवश्यकता है। ये जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली से जुड़ा होना चाहिए। तो बस जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार अभी के लिए हमारी ओर से।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय शाम के ठीक 4 बजे है। आइए जुड़ते हैं संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार आदाब। आवासीय संकट ना सिर्फ विकासशील देशों के लिए एक मसला है बल्कि ये 21वीं सदी में सबसे बड़ी इंसानी हकीकतों में से एक है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक उच्च सतह वाली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे विकासशील टापू देशों के लिए नया अर्बन एजेंडा न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि जीवन है। मंत्री शकील मोहम्मद ने याद दिलाया कि मॉरिशस ने अपने साहिली इलाकों की हिफाजत करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनाई ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो। उन्होंने दोबारा पुष्टि की इस सरकार की प्राथमिकता आवास है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातेल में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत $300 मिलियन यानी 14 बिलियन रुपए है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। एनवायरमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन इकोसूड द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है। 15 जुलाई को स्थलों का दौरा भी किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जानी जा सकें। इस 17 जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैद्रेस वालाइडों की सुनवाई रही। विदेश में लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। आबनाए हुरमूज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर कर दिया है। और ग्रेट ब्रिटेन में एंडी बर्नम लेबर पार्टी के नए नेता बन गए हैं। सोमवार को वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड रोशतिया में 87 साल के 87 years old श्री चुनुलाल होरदान जो रामदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी ज्ञानती होरदान के घर रॉयल रोड रोशतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौंगुप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में दुबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम शुक्रवार का दिन है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 4:13 होने जा रहे हैं। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आपके साथ जुड़े हैं लाजवाब इस कार्यक्रम में, जहां पर आप ही के भेजे हुए खत, आप ही की भेजी हुई प्यार भरी चिट्ठियाँ, जो आपके रिश्तों के एहसास

खास को जताती है। और आज के इस कार्यक्रम को भी खास हम खास कुछ ऐसी चिट्ठियां हम तक आई हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये प्यार भरा खत आज आया है एक बहन के प्यार को दर्शाता हुआ, और ये लाजवाब सा पत्र सच में आपके बचपन की मीठी शरारतें, मीठी यादों को ताज़ा करता हुआ। आप लिखते हैं कि आप अपनी बहन से बहुत बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी में बहन का प्यार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बचपन की वो मीठी शरारतें, वो प्यारी प्यारी बातें, वो हंसी, वो खुशी भरे पल आपको सदा याद आते हैं। हर रक्षाबंधन पर मिलना, हर एक बार एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे को उपहार देना, और साथ ही साथ माँ न होने पर मुझे माँ का प्यार देना। जब माँ काम पर जाया करती थी तो केवल मेरी बड़ी बहन ही मेरा ख्याल रखा करती थी, और साथ ही साथ भले लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुआ करते थे क्योंकि इस वक्त मैं छोटा था और मेरी बहन एक जिम्मेदार, उस उम्र में उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जब माँ काम पर जाया करती थी और वे मेरी देखभाल किया करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मेरे लिए खाना बनाना, मुझे स्कूल तक पहुँचाना, और साथ ही साथ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जो प्यारी सी बहन है उसे भी पढ़ने का कभी शौक रहा होगा। बस मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि वे सदा मेरा ख्याल रखने के लिए ही मेरे साथ रहती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे बाद मेरे जो छोटे भाई बहन थे उनका भी वो बहुत ही प्यार से ख्याल रखा करती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हम समझदार हुए, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी बड़ी दीदी भी अपने सपनों को दबोचकर, अपनी चाहतों को मन में छुपाए हुए बस कहीं ना कहीं हमारे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हुई उसकी वो सारी जिम्मेदारियां। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने हम जिम्मेदार बने और साथ ही साथ जब मम्मी और पापा बीमार हुए, पहले पिताजी गए और फिर माँ ने हमारा साथ छोड़ा, उस समय भी हमें उतना ख्याल नहीं आया था क्योंकि हमारे सर पर हमारी बड़ी दीदी का हाथ था। हमारी प्यारी बड़ी दीदी ने कभी शादी भी नहीं की, हमको पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे करते हुए सारी घर की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। आज के समय में ये कितना मुश्किल होता है ये तो हमने तब जाना जब कुछ दिन पहले हमारी दीदी ने आंखें बंद की। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, बस यही बात हमें शेयर करनी थी। अगर आज के इस कार्यक्रम में आप हमारी चिट्ठी को शामिल करती हैं तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका यह कार्यक्रम हर सप्ताह मैं सुनता हूँ और आपके कार्यक्रम की सबसे लाजवाब बात यह है कि आप किसी का नाम नहीं लेती।

दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, आपने इस कार्यक्रम में अपनी चिट्ठी को भेजकर हमारे इस कार्यक्रम को बिल्कुल बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत मान दिया। और सच में देखा जाए तो ये आसान बात नहीं है कि जब हम अपने जीवन के एक व्यक्तिगत अंग को, एक पर्सनल अंग को हम किसी के साथ शेयर करते हैं। और बेशक आपने जिस तरह से बयान किया कि आपकी प्यारी सी बड़ी सी बहन जो हमेशा आपका देखभाल करती थी, माता पिता के जाने के बाद भी आपको ये एहसास नहीं होने दिया कि आप अकेले हैं। और जब माँ का साया सर से उठ जाए और उसके बाद बिल्कुल पिता का भी साया सर से उठ जाए, लेकिन माँ के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि भाई पिता के बाद आते हैं, बड़े भैया का जो रोल होता है वो पिता के बाद आता है। और उसी प्रकार से जब माँ ना रहे तो माँ के बाद बड़ी बेटी या बड़ी बहन घर का, घर की उस जिम्मेदारी को सर लेती है। और वैसा ही आपने भी महसूस किया। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल ये एक बहुत ही दिल छू जाने वाला एक ऐसा किस्सा जो आपने हमारे साथ शेयर किया। और इससे बेहतर कोई गाना हो नहीं सकता जो आपकी सिचुएशन को बिल्कुल मैच करता है। बेशक अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, अपने कोई जज्बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, 402-8070 या फिर 5250-6200।

0: कई बार कहते हैं ना कि ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है या बहन बहन का रिश्ता होता है, ये भी किसी दोस्ती से कम नहीं होता है। और चलिए, यहाँ पर कई बार हम रूठने मनाने में लग जाते हैं और इस गीत को बस अभी थोड़ी ही देर के लिए रोकते हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी हमारी एक श्रोता जुड़ी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या है कहने के लिए। हेलो,
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते श्यामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: हाँ धन्यवाद।
0: हाँ जी,
1: तो मैं ये कहूँगी

0: जी रत्ना जी।
1: हाँ जी।
0: काश सभी बहनों की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को इतनी इज्जत देती।
1: बिल्कुल
0: है। अब बहन नहीं रही, कहते हैं वो जो औरों के खातिर जिए मर मिटे, पूछती हूँ उन्हें क्या मिला। तुम न ब्याही न हाथों में मेहंदी रची और न माथे को टीका मिला, तो क्या मिला फिर। बहुत ऐसी बहनें हैं जिसने अपने आप को माँ बनकर बच्चों को संभाला है, जीवन दिया है
1: जी।
0: उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दिया है, अपनी सारी उम्र अपने भाई बहनों के लिए निछावर कर दिया है, जीवन भर कुंवारी रह गए। कितनी ऐसी बहनें हैं,
1: बिल्कुल
0: है? हाँ। काश सभी कोई उन्हें वो इज्जत देती जो इज्जत अभी इस लड़की को मिली है, है?
1: बिल्कुल।
0: जो इसने ये खत लिखा है, अगर सभी बराबर ऐसे सोचते तो।
1: सही बात, क्योंकि आसान नहीं होता। और जैसे हमारे अभी एक और श्रोता ने कॉल किया था, वो भी बता रही थी कि किस तरह से, किस प्रकार से उनकी बहन ने उनको जब उनके घर लक्ष्मी आई थी, उनके घर उनकी बेटी आई थी, तब किस प्रकार से उन्होंने 28 दिन तक उनकी बहन की सेवा की थी,
0: सेवा
1: किस प्रकार से उनको बिल्कुल माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और बिल्कुल जैसे यहाँ पर एक और प्यारा सा मैसेज आया है, और वे भी लिखती हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि भाई जो होता है वो बाप के बाद भाई, बड़ा भाई जगह लेता है, और बिल्कुल माँ की जगह, जैसे माँ गुजर जाए तो बड़ी बहन अपने भाई बहनों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। और कई
0: जो भाई होते हैं ना,
1: हाँ,
0: वो तो अपने छोटे भाई बहनों को भूखे नहीं छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कभी
0: वो
1: भूखे, कभी वो भूखे
0: उम्र से कमाना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मान लीजिए अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनके लिए बाप बनकर निवाला ढूंढने जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत कह सकते हैं कि कई बार बड़े हो जाने के बाद, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस, हम एहसान शब्द नहीं कहेंगे, पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, तो जिस बहन ने या फिर जिस बड़े भाई ने अपनी खुशियों को भुलाकर केवल भाई बहनों के लिए अपनी ज़िंदगी को न्योछावर कर दिया, उसके लिए फिर वो बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि भूल ही जाते हैं कि एक समय था जब इसी भाई या इसी बहन ने मेरे लिए अपने खुशी का त्याग कर दिया। बिल्कुल, बहुत
0: कुर्बान किया है, कुर्बान किया है, अपने आप को निछावर कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी अपनी जिंदगी संवारनी है, मुझे भी अपनी अपना घर बसाना है।
1: बिल्कुल
0: पता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही बात कही आपने श्यामा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपको, आज के इस कार्यक्रम में आपने भी भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर तो हम ये गाना जरूर चलाना चाहेंगे, जहाँ पर भाई बहन के प्यार को दर्शाता हुआ ये एक बहुत ही प्यारा सा गीत है। आइए सुनते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी को कहेंगे, और जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस यूं ही साथ दीजिएगा 5 बजे तक। ये कार्यक्रम जारी है रेडियो मनोरंजन के लहरों पर।

आपकी चिट्ठी मिली में आपके खत, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स लगातार आते रहे हैं। और यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, कहते हैं प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू सो मच, बस आप हमेशा यूं ही प्यार से साथ देते रहिएगा। और बिल्कुल लाजवाब सा ये प्रोग्राम तो आप ही के जज्बातों से सजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप ही के भेजे हुए ख़त या आपके भड़े भेजे हुए मैसेजेस को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वैसे आपको ये भी हम बताते चले कि यहाँ एक छोटा सा लेटर, छोटा सा मैसेज हमें मिला है, जो लिखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जैसे बड़ी बहन की बात हो रही है हमारे घर में, माता पिता के बाद बड़े बहन बड़े भाई जिस प्रकार से हमें हेल्प करते हैं, हमें जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ ज़रूर अपनी बड़ी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरी लाइफ को बहुत बहुत ढंग से समेटा, खासकर उस समय जब मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। यहाँ पर मेरी शादी होने वाली थी और बस कुछ ही दिन बचे थे जब मेरी मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ और मेरी मंगेतर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई और मैं पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया। और बस मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को ये जगह नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत समय लगा मुझे अपने आप को समेटने में, मैं पूरी तरह से अपनी तन्हाइयों में डूब चुका था, अपनी जिंदगी से मैंने बस मुंह मोड़ लिया था। ना ढंग से मैं खाता था, ना ही ढंग से काम पर अपना ध्यान फोकस कर पाता था। और ये वही समय था जब मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहन ने मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं रहने दिया। और कहीं ना कहीं आज अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर पाया हूँ तो इसमें बस मेरी बहन का ही हाथ है। मैं यहाँ पर सच में उनका नाम लेकर उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सुषमा दीदी। आपने एक छोटा सा भोजपुरी में भी मैसेज यहाँ पर डाला है, जितना तू ना रहते तो हम कब के मर गई होती। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और चलिए, ये भाई बहन का प्यार हमेशा मजबूती से, प्यार से, बस यूं ही हमेशा बना रहे।

0: चलिए इसी के साथ हमारे साथ एक और श्रोता ने बहुत हिम्मत दिखाई है आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने की, आइए उनसे बात करते हैं और इस गीत को भी थोड़ी ही देर में हम जारी रखेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राधा जी।
1: हाँ जी, हाँ रत्ना जी, बहुत खुश हुई आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब मेरी बेटी जैसी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, और आपको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आप पसंद कर रही हैं ये हमें जानकर बेहद अच्छा लग रहा है।
1: हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, मैं कभी नहीं रहती हूँ ना, तो वो मेरी एक सखी ने मुझसे कहा ये सुनो इस प्रोग्राम को, तो मैं सुनी, तो कभी कभी निकल जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, व्यस्त हो जाते हैं तो कभी समय नहीं मिल पाता है, पर चलिए
1: मिलता।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: आप रिश्ते की बात कर रहे हैं, माता पिता। देखिए जब हमारा जन्म होता है रत्ना जी, सबसे पहले हमारा रिश्ता हमारी माँ हमारे पिताजी से होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भाई बहन सबसे हमारा रिश्ता जुड़ता है, आसपास पड़ोसी परिवार सबके साथ। लेकिन एक बात है रत्ना जी कि कभी कभी समय ऐसा भी आता है, कैसे है ना एक गाना में ना कहा है ना कि वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है।
0: सही कहा।
1: हाँ, तो देखिए कहीं कहीं रिश्ते बहुत मजबूती के साथ निभा दे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमजोरी आ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे कहे हम मनुष्य हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन फिर भी हम में आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, तो हम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वो तो है जो हमेशा हमारे साथ हैं। क्योंकि ये तो सांसारिक रिश्ते हैं, वो तो टूटते हैं बनते हैं, ये तो चलता ही रहता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनके साथ हमारा रिश्ता हमारा जुड़ा रहे कभी भी किसी समय में, तो ये महसूस भी नहीं होने देता है कि हमारे अपने हमारे साथ हैं या नहीं।
0: सही।
1: लेकिन मैं उन लोगों के बात में करूंगी जो सच में बहुत मजबूती से अपने परिवारों के साथ जुड़े रहते हैं किसी भी समय किसी भी अवस्था में, वो शादी हो वो मृत्यु हो वो कुछ भी हो, वो उनके साथ रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि देखिए हर किसी की किस्मत में परिवार नहीं होता है ना।
0: सही बात।
1: कोई ऐसा हद है जिसके आगे फिर सच में कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी परिवार वाले होती हैं तो वो साथ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये
1: आशीर्वाद
0: बहुत, बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल
1: जी, बहुत। और अभी जहाँ पर हम जी रहे हैं जिस युग में, ये तो किसे मैं बोलूं, ये मन ले सच में आप बोल रही हैं, ये आशीर्वाद ही है अभी के समय में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत धन्यवाद रत्ना जी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं।
0: चलिए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सुंदर होता है, और आप लोग जब भाग लेते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी,
1: मेरा शुभ आशीष है आपको।
0: बहुत
1: धन्यवाद, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि आपको भी, और बेशक आज के इस कार्यक्रम को दिलचस्प गीतों के साथ, दिलचस्प बातें, आपकी दिलचस्प जज्बात, और ये जो जज्बात है ये बस बने बनाए जज्बात नहीं है, ये हकीकत है, और ऐसे ही लाजवाब कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं हर शुक्रवार की शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच। आपकी चिट्ठी मिली

0: जिंदगी के कुछ लम्हे बहुत खास होते हैं, एक बार निकल जाए फिर वो वापस नहीं आते। इसीलिए कहते हैं ना कि रिश्तों को बस समेट कर रखिए, रिश्तों को संजो कर रखिए, ये बहुत खास होते हैं, बहुत ऊपर वाले की देन होती है, ऊपर वाले की मेहरबानी ही होती है, तब जाकर हमें ऐसे रिश्ते मिलते हैं। और चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ने के लिए बिल्कुल आतुर है, आइए उनको भी हम ज़रूर मौका देंगे, बात करते हैं इनके साथ। हेलो
1: हेलो रचना जी,
0: नमस्ते। नमस्ते सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: अच्छा, मैं तो पहले आपके नाम, अपने नाम बता रहा हूँ, मानो चौहान त्रिभुषे से।
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एमबीसी के धन्यवाद कहते हैं हम। तो देखिए, ये तो भूल नहीं हम सकेंगे, ये सब लोगों को पता है कि जिनके माता पिता छोड़कर चला गया वो तो चीटती रहता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दूसरा बात, अगर माता पिता चला गया काफी दिनों से चला गया, तो जो बड़े बड़े भाई बहन हैं वो माता पिता के जगह ले लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: ले लेते हैं ना।
0: सही कहा।
1: तो वैसे ये जो प्रोग्राम है चिट्ठी का, तो चिट्ठी मतलब कि सब कुछ इसी में बताते हैं कि चिट्ठी क्या है। चिट्ठी चिट्ठी है, जो पहले विदेश जाते थे तो चिट्ठी लिखते थे, ठीक है, चिट्ठी पोस्टर से आते थे और हम लोग चिट्ठी में सब कुछ शेयर करते थे, और जितने दोस्त भी है, जितने माता पिता है, जितने कोई जितने लोग दुनिया छोड़कर चला गया, वो जितने बोली छोड़कर गया वो सब चिट्ठी ही है। सही है ना?
0: सही, बिल्कुल बिल्कुल सही
1: कहा। तो यही हम कह रहे हैं कि चलो, ये जो हमारा जो माता पिता, जो हमारा बारा दादा दादी, जो हमारा जो भी परिवार चला गया दुनिया छोड़ के, उनको भूलना नहीं चाहिए। उनको चिट्ठी, उनके बोली सुन, जो बोला था वही सब बोली के उसके चिट्ठी की तरह रखना और शेयर करना और सोचते रहना उन लोगों के बोली।
0: बिल्कुल। और उन्होंने जो सिखाया है उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता ने कहा ना कि पहले के समय में ये रिश्तों में जो मिठास होती थी, रिश्तों में जो बंधन होता था वो दिखाई देता था, पर आजकल हर इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि एक दूसरे की, कभी कभी तो हम एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं कर पाते, बात भी नहीं कर पाते, पर फिर भी अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक बहाना ढूंढते हैं जहाँ पर एटलीस्ट महीने में एक बार हम मिले या फिर 15 दिन में एक बार हम मिले।
1: हम एक बात बताएं आपको।
0: हाँ जी।
1: देखिए, पहले जितने बुजुर्ग थे हमारा गांव में, दादा बोलते थे नमस्ते दादा, नमस्ते दादी, चाची चाचा नमस्ते।
0: हाँ।
1: अभी तो है नहीं।
0: हाँ, सच्ची सच्ची
1: बोल रहे हैं। काम हो गया है।
0: बिल्कुल, धीरे धीरे करते हुए सभी एक एक करके, जैसे जैसे कहते हैं ना कि जिन जिनका टाइम आ रहा है, एक एक करते हुए निकलते जा रहे हैं।
1: मतलब कि जितने के बस आ रहा है, बस स्टॉप में तो जाना पड़ेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अभी देखिए, ये जो नौजवान है,
0: हाँ जी,
1: या आपका बेटा है, मेरा बेटा बेटी, जिसका बेटा बेटी है, इन लोगों तो बात ही नहीं करता।
0: बिल्कुल सही।
1: इन लोगों तो किसी को जानता ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: इन लोगों तो राम सलाम करता ही नहीं। इन लोगों तो पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं कि सिर्फ ये लोग मोबाइल में रहते हैं और पोता में रहते हैं और लैपटॉप में रहते हैं।
0: बिल्कुल। कई बार
1: घर घर में भी बच्चे लोग बात ही नहीं करते।
0: कर पाते। सही बात। तो और ये जो है ना,
1: हमारा बड़ों का दुख है।
0: हाँ, क्योंकि पहले तो बातें होती थी और आज के समय में हम सिर्फ उंगलियां चलाते हैं, देश विदेश में सभी के साथ रिश्ते नाते जोड़े बैठे हैं, लेकिन हमारे जो पास, हमारे जो बिल्कुल घर के करीब बैठे हैं, उनसे हम कभी मुलाकात भी नहीं करते, कभी बातें नहीं करते।
1: अभी देखिए, एक बात बताऊं।
0: हाँ जी।
1: खत्म करने से पहले, हमारा एक बड़े भाई है आनंद पेटोप जी।
0: हाँ जी।
1: तो वो बेचारे, उसके हो गया है 84 ईयर्स, और उनका पत्नी का 75।
0: हाँ जी।
1: तो वो लोग चार बच्चे हैं उनका, चार लड़की, वो लोग, उनको शादी हो गया है, हम उनके पास जाते हैं बात करने, पहले के बात करते हैं, अभी के बात करते हैं, अभी के बच्चों के बात करते हैं, अभी के जमाना जो है उनके बात करते हैं, जितने जमाना बिगड़ गया है वो सब बात करते हैं, वो हमारा घर आते हैं, हम चाय पीते हैं बात करते हैं, ओके उसके घर जाते हैं, उसके घर चाय पीते हैं बात करते हैं, तो अभी सोचो कल के वो नहीं होगा तो हम किसके साथ जाएंगे बात करने।
0: नहीं, ये सही बात सोच, है।
1: ये सब सोच सोच के हम लोग, हमारा जैसा जितने लोग हैं घबराते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल, कई बार हमें लगता है कि वो जो कनेक्शन है, वो जो

0: दूसरे के साथ जो मिलते हैं बैठते हैं बातें करते हैं ये अगर ना रहे तो बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि इंसान जो है वो जज्बाती कम रोबोट ज्यादा बनते जा रहे हैं और बिल्कुल टेक्नोलॉजी हम इतनी ज्यादा अपना चुके हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ टेक्निक से ही चलता है यानी हमारे हमारे जो भावनाएं हमारी जो हाँ जी
1: हम एक बात बताएं
0: हाँ जी
1: ये जो टेक्नोलॉजी अभी जो AI आ रहा है
0: हाँ जी हाँ जी
1: मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये और आगे चल के क्या होने वाला है
0: सही बात नहीं हालांकि ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है लेकिन ये सहूलियत के साथ साथ इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसको समझना बहुत आवश्यक है पर अच्छा लगा मोहन मनोज जी आपसे बात करके
1: एक छोटा बात जोड़ देंगे
0: हाँ जी
1: हम खत्म करेंगे अभी देखिए हमको तो पता नहीं है कि आपका एज का क्या है
0: हाँ जी
1: लेकिन हम तो 60 से ऊपर हैं
0: हाँ जी
1: लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ अभी देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे और कोई बहन जी है बात कर रहे हैं
0: हाँ
1: और कोई भाई जी बात कर रहे हैं लेकिन बाद में चल के अगर आप या बीसी में काम करते हुए तो पता नहीं नौजवानों को आपसे फोन करके बात करेंगे या नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: कहा हम लोग अगर अभी है तो बात कर रहे हैं अगर कल नहीं है तो पता नहीं आपसे कौन बात करेगा
0: सही बात है आप लोग हैं इसीलिए हमारा
1: आप सिर्फ अकेले बात करके गाना चला दोगे
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं और हाँ कहते हैं ना कि ये रेडियो जो है वो हमारे श्रोताओं के कारण बहुत ज्यादा सुशोभित होता है आप लोग हैं तभी तो हमारा कार्यक्रम और सुंदर बनता है पर अगर आप ना हो तो मुझे लगता है कि बस हम अकेले बैठे बैठे बातें करेंगे अकेले बैठे बैठे गाने चलाएंगे बिल्कुल थैंक यू सो मच बिल्कुल
1: आप ये प्रोग्राम मजबूत लाते हैं हम बात करते तो मजबूत हो जाता है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: चलो कोई बात नहीं क्या करें जमाने के जैसे जैसे
0: जमाने के साथ चलते हैं
1: साथ चल रहे इसी तरह चलना पड़ेगा
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और
1: खुशी हुई आपसे बात करके हम आपके प्रोग्राम एंजॉय करते रहते हैं
0: थैंक यू सो मच
1: गॉड ब्लेस यू डू इट योरसेल्फ थैंक यू वेरी मच
0: बस बहुत बहुत प्यार आपको और बिल्कुल बातें करते करते समय भी हमें बस अंत तक ले आया है इस वक्त 4:55 हो चुके हैं और अगर आप घर जा रहे हैं कहीं जगहों पर बरसात हो रही है बस संयम बना के रखें ट्रैफिक में फंसे हैं तो चिड़चिड़ापन नहीं पर गानों को एंजॉय कीजिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ क्योंकि मुस्कुराहट आपकी सारी थकान को दूर करता है आपके तनाव को दूर करता है तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ में जो गाना हमने शुरू किया था उसे ख़त्म करते हैं और इसी गीत को हम ले चलेंगे 5 के समाचारों की ओर माफ़ कीजिएगा समाचार तो नहीं पर 5 कलाकार के बाद कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ेंगे और इस कार्यक्रम में आपका साथ देंगे रोशन हरनाम जी तो ज़रूर आप उनका साथ दीजिए हमें दीजिए अनुमति एक बार फिर 5 से 6 रेडियो मॉरिशस पर गीत और गजल कार्यक्रम में आप हमारा साथ जरूर दे सकते हैं तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ संध्या आप सभी को

0: 94.96 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिलाते चला 5:01 हो गल बा। अभी अभी आप लोग सुन लजा प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली अपन सखी रत्ना जी द्वारा। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहल और हम आशा करते हैं कि बहुत ही लाभ उठेले हुआ जा। तो चला तोहर खतीर अब ई प्रोग्राम चला बा।
2: कलाकार की बात

सभी श्रोतालोगन के रोशन की ओर से सप्रेम नमस्ते। चला रेडियो सेट की भीरी त चलाल हो वजह हंसते हंसते कलाकार के बात कार्यक्रम में तो लोग के शानदार स्वागत करते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के लहर पर। ई जोन प्रोग्राम है ना, ई तो हर अपन मन पसंद है ही और ई और एम फ्री रेडियो मनोरंजन जो है एक रेडियो चैनल जो है एक बिना तो तुहर गुजारा नहीं होएला हमके तो ई पता बातें हाँ कि नहीं। आज भी हमनी के संगे कोनो कलाकार नहीं होवन जा त चला जब कलाकार लोग अनुपस्थित रहेलन जा त हमर पास त एगो बढ़िया प्लान भी रहेला। अगिये से तैयार हो जाला ई प्लान तो लोग त हमनी के ठोस कलाकार हो जा त चला हमनी के जो हमनी के श्रोता कलाकार होवन ओकर ओ लोग खातिर तोहर खातिर

तेरे को छोटा सुन प्रश्न उत्तर हमने रख रहे हैं जा और तू तो जाने ला जा कि महाफाइनल बा वर्ल्ड कप के जो न दिमाग के चली यानी रविवार के रात्रि के तरशरा यही उपलक्ष में तोहर से हमने प्रश्न पूछब जा और तो लोग भोजपुरी में जवाब देवा जा और बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न बा कोनो वर्ग के लोग ही में भाग ले सकी बच्चा लोग नौजवान लोग अधेर उम्र के लोग बड़े जन महिला पुरुष कोई भी जोन भोजपुरी से एकदम लगाओ बाओ लोग के तो चल हमने के पहला भोजपुरी गाना तो चलिए अभी

0: पहला प्रश्न भी सुन ला जा 402-8070 पर फोन करके हमने के जवाब दिया जा बहुत ही आसान बा तो चले एगो वाक्य हम तोहर के तीर भोजपुरी में बोलत हैं एगो वाक्य ने एगो सेंटेंस एगो फ्राज तोहरा चाहेला ई जोन वाक्य है ओके पूरा करे के दो भोजपुरी शब्द ढूंढ के अंत में ऐसन दो शब्द आवेला जोन तोहरा चाहेला हम के ढूंढ के बताए के जोन दो भोजपुरी शब्द है तो चला वाक्य इस प्रकार बा रविवार के रात के अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में विश्व कप के फाइनल के लिए एगो बढ़िया मैच दुगो शब्द मिसिंग बा जो अंतिम दुगो शब्द है वो कौन शब्द है एक बार फिर वाक्य सुने जा रविवार के रात के अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए एगो बढ़िया मैच ई जोन दुगो शब्द है ई कौन शब्द चाहना जोड़ के तभी वाक्य पूरा होई तो अपन नंबर वा मिला हुआ 402-8070-402-8070 पर जवाब द और तब तक ई गाना सुना
1: RM3 Radio.

0: चलो इतना घामा मैंने चहला खेले के नहीं तो लेने के देने पर जाए, लेकिन जो सवेरे के जो धूप है जो घामा है ओकर में चहला बहुत बहुत ध्यान दे के रहे के कहे कि विटामिन डी मिलेला। तो चल हमने के पहला श्रोता चला होवन ऑन एयर सभी मॉरिशस वासियों के सुनी जा, हम तोहरा एगो प्रश्न पूछ ले रही सर। तो चल ओकर हमने स्वागत करत है जा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते इता भाई उदय होवन।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हो उदय भाई?
1: सभी लोगन के भी नमस्ते जो अभी साथ दे हुआ।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग,
1: सभी फुटबॉल प्रेमियों के।
0: अच्छा बहुत बढ़िया। तो चला भाई उदय जी एगो प्रश्न पूछ ली रविवार के रात के और

0: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए गो बढ़िया मैच दूगो शब्द
1: मुकाबला
0: महामुकाबला नहीं हाउ दूगो शब्द नहीं है कैसे वाक्य पूरे हुई जैसे हम तोरा बोला उदय भाई एगो अच्छा आदमी कुछ है होवन ना तो उसने बोला था रविवार के रात के अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल के लिए गो बढ़िया मैच एगो दूगो शब्द छाना थोड़ा जोड़े के कौन दूगो शब्द है बोला हमनी के
1: बढ़िया मैच खेलाई
0: हाँ बढ़िया मैच खेलल जाए
1: खेलल जाए
0: हाँ खेलल जाए यही छा तोरा ढूंढे के बहुत ही बढ़िया अभी नहीं समाप्त हो बा और एक प्रश्न बात हो अभी सुना अभी जब वर्ल्ड कप शुरू होल और अभी हम तो दिमिल वेंसिस में है ऐसा 2026 में है ना तो पूरा 96 इयर्स हो गया बा 96 हो गया बा वर्ल्ड कप के तो भोजपुरी में 96 के का बोल बा 96 के भोजपुरी में का बोल बा हमके बताओ जल्दी जल्दी
1: चार कोरी
0: सोलह ई तो खिलाड़ी हो गए थे बहुत ही बढ़िया उदय भाई दोनों जवाब जो तू देला जा बहुत ही चौचक रहल बहुत धन्यवाद उदय भाई कैसे बुझाता प्रोग्राम अच्छा बा
1: अच्छा बा हमनी के लोकाजा मिला था ढेर के लोकाजा मिली फोन करके
0: हाँ काहे नहीं मिली सबके हाँ चाहे ना
1: से प्रश्न पूछे जा
0: अच्छा पूछते जा आप सर फिर से सकब भाग ले हाँ,
1: हाँ अनेक सोचा की भी भाग दे हाँ, मौका दे हम
0: धन्यवाद धन्यवाद अच्छा, उदय भाई
1: भाई

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद कार के बाद
1: कलाकार के बाद रोशन के साथ और आज हमने गो मजेदार खेल खेले थे जहां भोजपुरी पर आधारित और खासकर वर्ल्ड कप और फुटबॉल के बारे में हमने भोजपुरी में प्रश्न पूछा जा एकदम फुटबॉल के बारे में नहीं बकुछ थोड़ा थोड़ा जो इन प्रश्न रहेला फुटबॉल से तनी मिलल रहेला तो चला हमनी के जो दूसरा प्रश्न बा जरा गौर से सुना जा आज तोहरा ऑन एयर जवाब दे के मौका मिली तो एगो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रलन आजकल उ दुनिया में नहीं होवन जेगो आर्मांडो माराडोना डिएगो आर्मांडो माराडोना 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध त एगो ऐसन गोल दलले रलन जेके सब कोई अब तक जानेला हैंड ऑफ गॉड डिएगो माराडोना ऐसन गोल दलन 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध जेके सब कोई बोलेला उ गोल के द हैंड ऑफ गॉड तो चला हमनी के बतावा भोजपुरी में द हैंड ऑफ गॉड के हमनी कैसे बोलब जा चला ई जल्दी जल्दी प्रश्न के जवाब द 402-8070-4200-4370 पर हमनी के जल्दी जल्दी बतावा कि द हैंड ऑफ गॉड के हमनी भोजपुरी में का बोलब जा जल्दी जल्दी इतना आसान सा प्रश्न बा तो चला जल्दी जल्दी फटाफट जवाब द

0: कहे ना अभी तो हवा तेज बा और पीछे से बरसात भी होता पनिया भी पड़ता लेकिन जरा सावधानी बरतिया जा काहे कि तनी सावधानी नहीं बरत बा तो कहीं बीमार न पड़ जाए बा अच्छा हमनी के श्रोता के हमनी स्वागत करी ल जा दूसरा श्रोता ई प्रोग्राम के और हमनी पूछले रली सा तोहर से कि जो जेगो आर्मांडो माराडोना रलन ऊ एगो गोल दले रलन 1986 में और ऊ जोन गोल है ओके हैंड ऑफ गॉड बनी ल सा तो हैंड ऑफ गॉड के हमनी भोजपुरी में का बोलब सा हेलो
1: हेलो रोशन भाई नमस्ते
0: नमस्ते भाई विजय जी कैसे बा चलता
1: चलता प्रोग्राम बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा सुनिए आतान के लिए हर हमनी सुख के तो आई बा
0: धन्यवाद कैसे हाल चाल तो हर
1: हाँ चला चला था गाना तो बजा देगा बढ़िया गाना बजाओ तो
0: काहे नहीं तो लोग के
1: चकुर पता के बहुत बढ़िया गाना
0: है हाँ तो हर तू तो ओकर नाम भी जान गए ला
1: हाँ नहीं नहीं वो फंस नहीं होगा
0: अच्छा अच्छा भाई विजय जी तो भोजपुरी में तो तू खूबे अच्छी तरह से बात करेला
1: कोशिश करती कैसे करती
0: तो बोल हमनी के हैंड ऑफ गॉड के आप भोजपुरी में कहाँ बोल बजा
1: भगवान के हाथ
0: भगवान के हाथ अरे वाह का बात बा सचमुच के हाथ से गोल दड़े ललन इंग्लैंड के चांस चल गल लेकिन सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के होए मार पड़ल का बोल भाई फुटबॉल के मामला कभी जीत तो कभी हार है ना लेकिन है हमेशा बार बार नहीं होएला ना तो चल हमनी के जो जवाब देला भगवान के हाथ या ईश्वर के हाथ तो एकदम सही जवाब देला तो चला हमनी के एगो और प्रश्न बा तोहर खातिर हमनी बोली सा तोहरा जब 1986 में ना 1986 में तो एक हिंदी में बोलल चला 1986 के 1986 है ना हाँ तो ऊ जो वर्ल्ड कप रहल 1986 में ऊ कहाँ रहल कौन देश में आयोजित हो रहल ऊ कुछ जुमोनवा विश्व कप बताओ हमनी के जाने ला स्पेन में हो रहा है बिल्कुल 86 में चार साल के बाद कहाँ होल बताओ
1: इंग्लैंड में हो रहा
0: इंग्लैंड में नहीं स्पेन तो यूरोप रहा ना तब तो बाद में नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है मेक्सिको में
1: हाँ
0: मेक्सिको ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पर तीन तीन बार वर्ल्ड कप होल बा
1: तीनवा बार होता
0: हाँ तीसरा बार अभी होल तीनवा बार बिल्कुल तो चलो भाई विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही भाग लेते रहिए फिर से सब भाग ले
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया बटे हम बहुत इंतजार कर
0: धन्यवाद भाई विजय धन्यवाद तुहर शुभ शुभ विचार खातिर तई विजय भाई रलन काबित से बास्तुपुल से और सही जवाब देलन कि हैंड ऑफ गॉड के बोलल जला ईश्वर का हाथ तो चला ऐसन ऐसन हमनी और प्रश्न तुहर खातिर लाभ जा भोजपुरी में तो चला तीसरा प्रश्न जरा गौर से सुने जा बहुत ही आसान सा प्रश्न बा क्यों ना थोड़ा हमनी भूगोल के बारे में थोड़े से पूछब जा यानी जियोग्राफी पर तो है जो वर्ल्ड कप होता और जो फाइनल अभी रविवार के हो तो एकर जो वर्ल्ड कप के आयोजन हो बा तीन गो देश में हो बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में हाँ जो

2026 के जून वर्ल्ड कप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में ये वर्ल्ड कप होल बा तो हमने के बतावा कि जो तीन गो देश अभी हमने बतैली तोहर से तो इन तीनों देश के जो राजधानी के नाम का है जैसे पोर्ट लुइस हमने के देश मॉरिशस के राजधानी के नाम है तो हमने के बतावा जो ये तीन गो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेक्सिको और कनाडा के राजधानी के नाम का है जल्दी जल्दी बताओ 402-8070-4280 पर जल्दी जल्दी दिमाग के घोड़ा के लड़ाओ और जवाब दे

0: सचमुच अनिरुद्ध बैजूनाथ भोला धवन जब लूटो चलाए बत शराब के सेवन बिल्कुल ना कर। और हमने पूछ ले रलीसा तोहर से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेक्सिको और कनाडा के राजधानी के नाम का है। तो चल हमने के पहला श्रोता जो है ओकर हमने सब बात करी ला जा। चल हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो हाँ जी नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते रोशन जी।
0: संध्या जी होन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करत हुआ है ना
1: जी, कैसे हुआ?
0: हम ठीक हैं संध्या जी, मुस्कुराती हुई संध्या जी, कैसे हुआ तू?
1: हम ठीक है, कोशिश कर रहे थे भोजपुरी में बात कर।
0: हम जानी रहा तो अर हिंदी बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात करे ला जा, लेकिन आज तनी कोशिश करो भोजपुरी में भी बात करे के।
1: जी
0: ऐसा सुंदर आवाज में खाली हम तोहरा जवाब दे के सुने हैं और गाना भी सुने हैं तोहरा जवाब तोहरा आवाज में, लेकिन अभी कौन जवाब दे? राजधानी के कौन नाम है तीनों देश के बताओ तनी।
1: यूएसए का है वाशिंगटन।
0: वाशिंगटन तो चला ये जवाब सही है। और

0: मैक्सिको का मैक्सिको सिटी,
1: ये भी सही बात बा।
0: और कनाडा का ओटावा।
1: ओटावा का बात भाई, तो बहुत ही जबरदस्त जवाब दे दिले हुआ संध्या जी, बहुत बधाई हो तुहरा। अभी नहीं फिनी होल बा, अभी नहीं समाप्त होल बा, तुहर खातिर दूसरा प्रश्न रैपिड चैलेंज है, ही चैलेंज स्वीकार करत हुआ ना। तो हमने के बता हुआ ई जो न मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बा, ई तीन गो देश कौन कॉन्टिनेंट में पावल जाला, कौन कॉन्टिनेंट में, जैसे मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पावल जाला,
0: अमेरिका।
1: हाँ बतावा,
0: नहीं मेक्सिको साउथ अमेरिका
1: नहीं। अच्छा अच्छा बात बतावा तर अभी कैसे पहले मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा कौन कॉन्टिनेंट में है, कौन, हाँ बोला हमने के
0: नॉर्थ अमेरिका।
1: नॉर्थन अमेरिका, बिल्कुल नॉर्थन अमेरिका में ही वर्ल्ड कप के आयोजन होल बा। बहुत ही धन्यवाद आपको संध्या जी, ऐसे ही भाग लेते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। ओके
0: ओके, बाय बाय,
1: धन्यवाद, बाय बाय।

धोखा दे के कबो नहीं चाहेला हमनी के बात माना धोखा देबत बाद में चल के तू भी खुद धोखा खेब। तो चला अगला प्रश्न अभी हम तोहर से पूछब, बहुत ही आसान सा प्रश्न बा। हमनी के बतावा कि एगो फुटबॉल मैच में मैदान के अंदर शुरुआत में कितना गो आदमी रहेला। बहुत ही आसान सा प्रश्न रोशन पूछ लेलक तोहर से। एगो फुटबॉल के मैच में मैदान पर मैदान के अंदर एगो ट्रिकी क्वेश्चन है, एगो ट्रिक ओला प्रश्न है। बताओ हमनी के मैदान के अंदर में एगो फुटबॉल मैच में कितना आदमी रहेला, कितना आदमी दौड़ेला बुल के पीछे। हमनी के बताओ 4028070704 पर जल्दी जल्दी हमनी के जवाब द।

0: चलो बसंत सुपोल जी की आवाज में है गाना सुनत हुआ धोखा कबो ने दे या चलो हमनी के अगले श्रोता के हमनी स्वागत करत हैं सर हेलो
1: नमस्ते
0: जी के बात करत हुआ इंदिरा जी मोदाबिया से बात करत हुआ जा तुहर स्वागत बा इंदिरा जी तो चलो हमनी के बतावा कि एगो फुटबॉल मैच में मैदान के अंदर कितना कितना लोग कितना आदमी लोग रहेला बतावा तुहर जवाब 22 करीब करीब हुआ 22 नहीं है एक और जवाब देबा 23 ई जवाब एकदम सही है बहुत ही अच्छा मैदान के अंदर 22 खिलाड़ी बा 22 खिलाड़ी बा ये तो बात सही है जैसे बोल रहा परंतु वह मैदान के अंदर रेफरी भी तो रहेला जो लॉबी था वो भी तो रहेला तो 23 हो जाला 23 बहुत ही सही जवाब देला तो हमनी के बतावा एगो मैथमेटिक्स के कैलकुल चला थोड़ा करे के हमनी के बतावा कि अभी 23 बोल रहा ना तो 23 के दुगुना कर द कितना होला 23 टाइम्स 2 कितना होला बताओ जल्दी जल्दी 46 क्या बात बा इंदिरा जी बहुत ही बढ़िया 23 टाइम्स 2 46 यानी 46 के भोजपुरी में क्या बोलबा
1: 46
0: हाँ हाँ

0: छियालीस ही तो हिंदी में बोली ला सा भोजपुरी में के बोल जला दो कोरी छे यानी एक कोरी बीस है ना तो दो कोरी चालीस हो जाला और छे रह जाला तो दो कोरी छे ओके बहुत ही बढ़िया इंदिरा जी बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू

0: कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद तो हर साथ हमने एक बहुत ही मजेदार खेल खेलते हैं जा हर श्रोता जो यहाँ आवता बहुत ही हमने के प्रसन्न करके चल जाता काहे कि भोजपुरी में बात करत हुआ और सही सही जवाब देवत हुआ बधाई के पात्र हुआ तो लोग जितना हम तोहरा धन्यवाद करब मन से उतना ही कम होए तो चल अगला प्रश्न हम एगो वाक्य जो है एगो फ्राज एगो सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलब तोहरा एके चाहेना अनुवाद में यानी ट्रांसलेट करके तहजुया करके ई तोहरा भोजपुरी में बताए के और ऐसन वाक्य के गौर से सुनिया जा Lionel Messi is considered as the best player in the world. Lionel Messi is considered as the best player in the world. ये और से सुन ल हमनी के बताओ भोजपुरी में ई वाक्य ते तू कैसे अनुवादित करब कैसे ट्रांसलेट करब 402-807-0402-8070 पर जल्दी जल्दी उत्तर

0: गभिया मारे
1: गभिया मारे के गो समय रहेला पूरा दिन तने सकब
0: सुना के गभिया मारेला हमरा देखा के छम छुम करे
1: छमछुम करते रहिया घर पर लेकिन जवाब भी तद और हमनी तोहरा से पूछ ले रही सर कि लियोनेल मेसी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एके भोजपुरी में कैसे बोलबा चला अगले श्रोता से हमनी बात करी ला सर हेलो फिर से इंदिरा अच्छा इंदिरा जी तोहर स्वागत हमनी फिर से करत हई सर हमनी के जवाब दे इंदिरा जी
2: लियोनेल मेसी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया
1: आदमी
2: हाँ खिलाड़ी
1: जैसे हमने बोला सर लियोनेल मेसी विश्व भर में

0: सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानल जाला ना और तुहर जवाब सही है चलो अभी समाप्त नहीं होल बा एगो और सवाल बा तुहर संगे पूछे के अभी हमने के बतावा कि अर्जेंटीना जो ना ओकर अर्जेंटीना के कितने बार वर्ल्ड कप मिलल बा कितना बार अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतले बा बताओ हमने के कितना बार
1: सात बार
0: नहीं जी सात बार तब ब्राजील वे के नहीं मिलल बा जो सबसे जस्ती है ब्राजील के तब पांच बार मिलल बा जर्मनी और इटाली के चार बार तो अर्जेंटीना के कितना बार मिलल बा एक लोग सही इतनी कमती बताओ तो
1: दो बार
0: नहीं तीन बार तीन बार मिलल बा इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ओके अर्जेंटीना के तीन तीन बार वर्ल्ड कप मिलल बा पहली बार के लिए 1978 में जब अर्जेंटीना ही में हो रहा वर्ल्ड कप दूसरी बार जहां पर हम तोहरा बोली हैंड ऑफ गॉड मराडोना के बोल बाला रहल 1986 में और तीसरी बार कतर के जोन वर्ल्ड कप रहल गत बार 2022 में एक बार फिर अर्जेंटीना के जीत हो रहल तो चलो ई रहल बहुत ही मजेदार प्रश्न तुहर संगे पूछे के तो चल एगो और प्रश्न तुहर से पूछे के बखत चलाल बा ई प्रश्न जरा गौर से सुना और हमनी के जवाब द कि जोन फर्स्ट वर्ल्ड कप है जोन पहला वर्ल्ड कप है उ कौन साल में लगल रहल बहुत ही आसान प्रश्न बा तोहर से पूछे के और तोहरा याद दिला दे ला जा कि कल रेडियो मॉरिशस और AM2 के लहर पर 5 से लेकर 6 बजे तक खेल खिलाड़ी प्रोग्राम हुई जहां पर लाइव एंड डायरेक्ट वर्ल्ड कप स्पेशल क्विज कंपटीशन हुई जहां पर कंटेस्टेंट लोग स्टूडियो में आके अपने आप में प्रतियोगिता करियन जा और बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प इनाम रखल गल बा लोग के पुरस्कृत करे के सुनिए जा MBC रेडियो मॉरिशस AM2 पर चून करिए 919 kHz कल 5 से लेकर 6 बजे तक आप लोग साथ दिया जा और हमनी के गो प्रश्न ऐसन है कि जो पहला वर्ल्ड कप है उ कौन साल में लगल रहल कौन साल में हो रहल 402-8070-402-8070 पर जल्दी जल्दी जवाब द

0: सचमुच हमने के जो पर्यावरण है जो एनवायरनमेंट है ओके हमने के छाला स्वच्छ रखे के बहुत ही साफ सुथरा रखे के सेहत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चल हमनी के जो प्रश्न रहल उही प्रकार रहल कि वर्ल्ड कप के जो पहला एडिशन रहल कब शुरू हो कौन साल में चलब हमनी के श्रोता के हमनी स्वागत करी ल जा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते बहन जी को नाम है तो है
1: अनीता बोल रही हूँ ओशनोर से।
0: अनीता जी के स्वागत बा ओशनोर से बात करत हुआ।
1: अनीता हाँ ओशनोर से।
0: हाँ अनीता बहन तो चला ये प्रोग्राम सुनत हुआ शुरुआत से।
1: हाँ शुरुआत से सुनत है नहीं मिला रिपोर्ट।

0: on sonnait.
1: Quoi, bat, n'aïe, de kin, abhi, ta jawab de wat, wana?
0: Abhi, hamar réponse a très 13 July to 30 July 1930, Uruguay me.
1: अरे बाप हम तो केवल तुहरा से साल पूछ ली तो पूरा हिस्ट्री बता देवत हुआ इतिहास बता देना
0: का बात बा
1: बहुत अच्छा बात बहुत बढ़िया अनीता जी अभी तू सही जवाब देला 1930 यानी 1930 में पहला जो एडिशन है यूरुग्वे में लगल रहल ना और यूरुग्वे के ही जीत हो रहल अपन देश में पहला जो वर्ल्ड कप है ओकरे जीत हो रहल तो हमनी के बताव एगो दूसरा प्रश्न तोहर से अभी पूछे के बखत चलल बा हमनी के बताव कि जो न गत एडिशन रहल गत बार 2022 में कहाँ हो रहल वर्ल्ड कप अभी अभी बतेले रही हम परी खोजे के तोहर दिमाग में हो यू
0: दिमाग में नहीं बा
1: कोई बात नहीं लेकिन जीत तो अर्जेंटीना के रहा ना फ्रांस के खिलाफ तो वो रहा कातो में है ना हाँ कातो में कोई बात नहीं लेकिन बहुत कोशिश कर ला है जा जीत होला नहीं तो हार कबो नहीं होला है जा सीखे ला जीते ला है ना तो फिर से सब भाग रही अनीता जी तो चाहे ला इसने करे के हाँ ये हमने करी ला सर काहे खाई के तोरे के दिमागी कसरत हो जाए तोरे के जो मेमोर है याददाश्त है और इम्प्रूव होते जाए बहुत स्वस्थ बन बा जब जब तो अपन दिमाग के इस्तेमाल कर बा तब तब तू स्वस्थ रह बा है ना धन्यवाद आपको
0: धन्यवाद रोशन जी
1: धन्यवाद बाय
0: बाय
1: इरहल अनीता जी रोशनो से एगो सही जवाब देलन और 1930 ही में यूरुग्वे के जीत हो रहल और यूरुग्वे में ही वर्ल्ड कप के आयोजन हो रहल और बता दे ला जा तोहरा कि जो न पहला फाइनल रहल यूरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना हाँ अर्जेंटीना ही पहला फाइनल में गरहल और हो जा रेड गॉड सब मिल गए रहल अर्जेंटीना के और बहुत ही तनी वायलेंट मैच रहल हिंसा भड़क गए रहल परंतु अंत में यूरुग्वे के ही जीत हो रहल तो चलो हमनी के जो अगला प्रश्न बा आप जरा गौर से सुना जा
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan कलाकार की बात कार की बात
1: सचमुच कलाकार के बात है तो काहे कि हमने के जोन श्रोता कलाकार हुवन बात करत हुवन सही सही जवाब देवत हुवन और ई पर भोजपुरी के गाना चलता ता सोने पे सुहागा तू कहाँ भागा चलो दूसरा प्रश्न तोहर खातिर तैयार हो गल बा एगो बहुत ही आसान सा प्रश्न बा और सुन जा बहुत ही ध्यान देके कि दूगो प्रकार के कारत हाँ दूगो प्रकार के कार्ड जैसे बोली रसा कारत बा जोन एगो रेफरी एगो खिलाड़ी के दिखावेला जब उ खिलाड़ी कोनो गलती करेला जेकर से अन्य खिलाड़ी के घायल होई के खतरा रहेला हमनी के बताओ कि कौन दूगो रंग के कारत रेफरी दिखावेला एगो खिलाड़ी के बहुत ही आसान सा प्रश्न बा कौन दूगो रंग के कौत बा कारत बा जोन रेफरी एगो खिलाड़ी के मैदान पर दिखावेला 4028070 पर जवाब द 402-8070 पर हमनी तुहरा इंतजार करत हैं सही जवाब खातिर

गमतवा कैसे छोड़बा जब ऐसा नैसन सुंदर सुंदर गाना चलता और जो संगीती पर ढलल बाई तब बहुत ही बढ़िया

0: तो चल हमारे को प्रश्न रहल कि दो प्रकार के कारत बा जो इन रेफरी दिखावेला खिलाड़ी के जब वो लोग गलती करे रन सा मैदान पर उ दू कोन रंग के कारत है। चल हमनी के श्रोता के हमनी स्वागत करी ला सा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते जी
1: रोशन जी नमस्ते मनीषा
0: मनीषा जी कहाँ से बात करत हुआ मनीषा जी सैं जूलियन दुतमों से मनीषा जी के हमने शानदार स्वागत करत हैं जा कैसे हुआ हम ठीक हैं हम ठीक हैं तू कैसे हुआ जा
1: बहुत बढ़िया
0: बहुत बड़ा जोर फुटबॉल देखा हुआ ना हाँ हर चार साल में तावेला तो हर फेवरेट टीम का है
1: वैसे भी तो लिवरपूल
0: है लिवरपूल ही तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के टीम है ना तो तोहर कुबजुबोन में कौन टीम है बता बताओ तनी कोनो प्रियोरिटी नहीं बात है तू सुंदर फुटबॉल देखेला जा कोनो के प्रेफरेंस नहीं बात तुहरा प्रायोरिटी नहीं देवेला कोनो मनपसंद टीम ने बात जो सुंदर फुटबॉल रहेला वो देखेला बहुत बढ़िया मनीषा जी तो चल हमनी के बताओ तो हर जवाब कहा दो दो प्रकार दो रंग के कारत बा कौन दो रंग के
1: एक है
0: पियर हाँ
1: और एक है लाल लाल
0: एगो लाल है एगो पियर है तू तो पंछी के रंग बता देला बहुत ही बढ़िया जवाब देला एगो लाल एगो पियर का बात बा हाँ तो ही खातिर हम तो दिल्ली ना एक प्रश्न हुआ तो जब पियर का दिखावल जाला तो खिलाड़ी सकी फिर से खेले पर जब दू गो पियर दिखावल जाला तो एगो लाल हो जाला जब हाँ जब रेफरी लाल दिखावेला तो का होला हाँ खिलाड़ी मैदान से मार्चिंग ऑर्डर करेला चल जाला हाँ ये तो बहुत बढ़िया तू तो फुटबॉल खेलेला हाँ जिंदगी में भी एगो फुटबॉल के मैच है ना फुटबॉल के मैच जिंदगी भी है हमने रोज के अपन बुराई से लड़ी ला सा जीते खोजी ला सा ना तो बहुत बढ़िया जवाब देला तो चल एगो और प्रश्न बा तुहर खातिर सुन हाँ तो जब तू बोल लाल और पियर ना पियर और लाल के जब मिला देब तो कौन रंग बन जाला
1: पियर और लाल
0: हाँ कौन रंग बनेला बोला था बोला जल्दी जल्दी कौन रंग बनेला हाँ लाल और पियर मिला देब जैसे हम बोलब तुहरा नीला और पियर मिलाए बा तो हरा हो जाला ब्लू और जून मिलाए बा तो वेया हो जाला ना जब लाल और पियर मिलाए बा तो कौन कुड़िया हो जाला कौन रंग हो जाला तनी सियांस चाहना करे के तनी फिजिक्स में ही बा बोला कोई बात नहीं उ जोन रंग होकर ना ओकर जोन अक्षर है ओ से शुरू होला उ नहीं कौन कुलिया ओ से शुरू होला कौन रंग ओ नहीं जी वो तो फूल के नाम बता देवत हुआ एगो फल के नाम भी है रंग में बा ओ ओरे ओरेंज हाँ नारंगी जैसे बोली ला जा हाँ हाँ ई रंग हो जाला जब लाल और पियर के मिला दे बता बहुत धन्यवाद तोहरा मनीषा जी बहुत अच्छा लगा तोहर से खेल खेल के ऐसे ही भाग लेते रहिए धन्यवाद भाई ओके तो ये थी मनीषा जी फ्रॉम सेंट जूलियन दुतमों
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मनोरंजन कलाकार की बात
0: चल हमने भोजपुरी में तुहर से प्रश्न पूछत है और तू ऑन एयर जवाब देवत हुआ बहुत ही बढ़िया चल एक बहुत ही आसान सा प्रश्न तुहर खातिर रख गल बा हम जानीला तोह लोग अपन देश मॉरिशस से बहुत ही प्रेम करेला जा तो जल्दी जल्दी हमने के 402-8070 पर बताओ कि मॉरिशस के जो सबसे बड़ा प्रांत है डिस्ट्रिक्ट है वो कौन डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही आसान मॉरिशस के जो सबसे बड़ा जिला बा ओकर नाम का है चलो जल्दी जल्दी नंबर वा मिला हुआ 402-8070

0: दाल रोटी खाएबा बिरयानी खाएबा उसे सब पेट भरते रहेला अपन जो डाइट है ओकर पर ध्यान दिया जा और हमने पूछ ली सर तोहर से कि जो इन मॉरिशस के सबसे बड़ा जो प्रांत है जिला है ऊकर नाम का बाटे चला जल्दी हमने बतियाई ला सर अपन अगला श्रोता से हेलो
1: नमस्ते रत्ना जी इंदिरा
0: जी तीसरी बार के लिए फोन कर रहे बहुत ही अच्छा चलो बताओ हमने के कौन जवाब दे बा रिबिया जुरांपा नहीं जी जो सबसे बड़ा रिबिया जुरांपा वो जो दूसरा सबसे छोटा है वो रिबिया जुरांपा है जो सबसे बड़ा है उसका नाम है फ्लैक फ्लैक है कोई बात नहीं धन्यवाद इंदिरा जी ओके चला अपन जवाब द ड्यूक ज्योग्राफी ही में हम प्रश्न पूछे थे तोहर से एगो गांव बा जेकर नाम है मलाकोफ एगो गांव बा जेकर नाम है मलाकोफ हमनी के बतावे कि उ गांव कौन डिस्ट्रिक्ट में पावल जाला बहुत ही आसान बा एगो गांव है जेकर नाम है मलाकोफ हमनी के बतावे कि मॉरिशस में कौन जिला में है जोन गांव है मलाकोफ पावल जाला 4028070

0: कार के बाद
1: जल्दी जल्दी बताओ कि जो ना गांव के नाम है मलाकोफ वो कौन जिला में पावल जरा मॉरिशस में बहुत ही आसान प्रश्न बा और केवल नौ गो जिला बा मॉरिशस में तो बताओ हमनी के 4-0-2-8-0-7-0 पर

0: हेलो, हमने बात करे थे इस केकर से अभी। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, के बात करत हो?
1: लक्ष्मी।
0: लक्ष्मी जी कहाँ से बात करत हो लक्ष्मी जी?

0: बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन कौन डिस्ट्रिक्ट में हो? कौन डिस्ट्रिक्ट में?
1: सावान।
0: सावान में? अच्छा से जवाब दे तो तनी भिड़िए हुआ, तनी सावान में बा और तनी ओकर आस पास एगो और गो डिस्ट्रिक्ट बा, बोला कौन डिस्ट्रिक्ट हो? ग्रांपो। तो चलो हम तोहर जवाब नोट करत हैं और तोहर जवाब है एकदम सही। बहुत ही अच्छा। तो कौन नाम बतेला अपन, कौन नाम है तोहर? हेलो, चल गए एगो और प्रश्न रहल पूछे के बहन जी से, लेकिन चल गए कोई बात नहीं। तो चल ई जोन रहा एगो छोटा सुन खेल रहा तोहर खातिर, भोजपुरी में ई खेल हमने निर्धारित कर ली सा, काहे काहे कि तो लोग के मौका मिली भोजपुरी में बात करे के और दिमागी कसरत भी करे के। और 5:55 हो गल बा और एकर बाद में तू सुन बजा देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के समाचार, ध्यानपूर्वक सुनिया। और कल हमनी के मुलाकात होता लाइव एंड डायरेक्ट क्वीज कंपटीशन वर्ल्ड कप में, और वहाँ पर कंटेस्टेंट्स स्टूडियो में यन जा और एक दूसरे से मुकाबला करिया। तब भूलिया नहीं काल खेल खिलाड़ी प्रोग्राम के दौरान रेडियो मॉरिशस के लहर पर 5 to 6 तक देख सुनिया लाइव एंड डायरेक्ट वर्ल्ड कप क्वीज कंपटीशन 2026, जहां पर तुम्हारा और जानकारी प्राप्त हुई वर्ल्ड कप के बारे में। हम तो जानी रह सक हमने जो मॉरिशस वासी है फुटबॉल में बहुत ही दिलचस्पी रखेलन जा। तो एकर बाद हम तुहर से अभी अनुमति चाहत हैं, नमस्कार और शुभ रात्रि तुहरा। और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस, रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन से जुड़ते रहिए जा।

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बंद रहा है। बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत $300 मिलियन यानी $14 बिलियन रुपए की है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया। मॉरिशस सातवां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटोमस समझौते का हिस्सा है। आज दोपहर बाद एबेन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डेप्यूटी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटोमस समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम मौजूद। मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी चुनौतियों पर बहस शुरू। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल। और विदेश में एंडी बर्नम ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नमस्कार, आदाब, समाचार विस्तार से सुनिए। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की कीमत $300 मिलियन यानी $14 बिलियन रुपए है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंध को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। क्लोदा जेफ्रा गादीबादू, आस्था गोबिंचतामन।
1: एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ मॉरिशस एक नए सहयोग नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। देश का 2.3 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब मॉरिशस अफ्रीका के उन 31 देशों में शामिल हैं जो पहले से ही अमेरिका के साथ इस व्यवस्था को लागू कर रही हैं। ये समझौता संयुक्त गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक सहायता, सामान और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कानूनी आधार देता है। इसका उपयोग सैन्य अभ्यासों, प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों और मानवीय अभियानों में किया जा सकेगा। जब हम साझा अभ्यास चलाते हैं, विशेषकर आपदा प्रबंधन के लिए, तो इस दिशा में ये समझौता दोनों देशों के बीच सेवाओं का समन्वय करेगा, चाहे वो ईंधन आपूर्ति हो, पानी सप्लाई हो या स्पेयर पार्ट्स हो। अमेरिका के साथ ये समझौता सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, खासकर पश्चिमी हिंद महासागर और आसपास के सेक्टरों में। इसका इस्तेमाल कटलास एक्सप्रेस जैसे सैन्य अभ्यासों में किया जा सकेगा। किसी वास्तविक आपात स्थिति में भी इसे लागू किया जा सकेगा जहां तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। ये समझौता सरकारी खरीद की सामान्य प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम करेगा। इससे दोनों देश जरूरत पड़ने पर अधिक तेजी और बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकेंगे।
0: मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी कई चुनौतियों पर बहस शुरू हो गई है। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल हैं। IMF की सिफारिशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने उच्च अधिकारी डॉक्टर विमल ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। सार्वजनिक वित्त, पेंशन सुधार और मौसम परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर महारत हासिल इस विशेषज्ञ ने आज हमारे सहयोगी शहजाद जुमन से बात की।
2: IMF ने मॉरिशस की इकोनॉमी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है जब से ये रिपोर्ट आम की गई है। तो हम

0: आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त इन टिप्पणियों पर गौर किया जाता है?
1: एगो मिशन आल रहल मोरिस अप्रैल में मिशन वा मिलन गवर्नमेंट से सेक्टर प्राइवेट से बान और एनजीओस लोग संगे और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर संगे सबको इसे मिलन जा ताकि उन लोग के जब रिपोर्ट वा लिखियन सतह सब इंफॉर्मेशन रही सब कोई के पॉइंट ऑफ व्यू सब सब कब से डाले उनमें।
0: आईएमएफ ने मॉरिशस में जब फिस्कल कंसोलिडेशन का अच्छा स्वागत किया है, दूसरी तरफ कई सुधारों की सिफारिश भी की है जिनमें पेंशन सुधार भी शामिल है और इस पर अभी ज़्यादा टिप्पणी हो रही है।
1: दूगो चीज यहाँ रहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन डेट और हमने के देश के डेट ढेर ऑगमेंटे होगा रहा और अभी जो फोहल बाटवा के पैसे होता मोते हो के हमने के ये भी देखे के चाहेला कि हमने के देश में बुढ़ापा उगमते हुआ था हमने के है के प्रिपारे करे के चाहेला और प्रिपारे कैसे करब सा हमने के चाहेला कि ला संते के सिस्टम हमने के बुढ़ान लोग के सब सा उन लोग के स्वयं ले कैसे के चाहेला हमने के ये भी चाहेला कि हमने के बड़ा लोग जो हवन सा उन लोग के सकब सा सोसाइटी में इकोनॉमी में इंक्लूड करे जब मैं उन लोग भी पार्टिसिपे हो जन सा जब बूढ़ा हुआ था सा पेंशन हाई में एगो एक पार्टी हा हाई सॉल्यूशन वाके हाई जो रिफॉर्म करता अभी हाई रिफॉर्म वा असुरे करी कि सब सकब सा पेंशन वा दे के आने वाले सालों में। मॉरिस लाफ्रिक से डिफरेंट हा हमने के पॉपुलेशन व्यय हुआ था लाफ्रिक के पॉपुलेशन अभी जनबा मैं जब देख बा जब एगो पेई जब जैसे बोला जापान जैसे बुल्गारी बा हाउ देश वन में भी व्यस्मा बहुत जल्दी से एक्सेलरे हुआ था पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुआ था और उन देशों में भी रिफॉर्म करे थे सा पेंशन के जमें हाउ सिस्टम वा सकी पेये करे आने वाले सालों में।
2: मुशरस टेलीकॉम की रिब्रांडिंग की जा रही है, आज ऑलमाइटी समिट का दूसरा दिन रहा। मुशरस टेलीकॉम की सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया। हुआवे, पालो आल्टो नेटवर्क्स और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी नवीनताएं पेश की और भविष्य की एआई पर अपना विजन भी आम किया। दासा पालासोमी, आस्था गोविंद तमन।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन का विकास बिना कठिन आईटी मूल ढांचे के करना, यही आज आयोजित एआई शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण रहा। अमेज़न वेब सर्विसेज और अमेज़न बेडरॉक ने इसका प्रदर्शन किया। इससे डेवलपर्स को आसानी से एआई तक प्रवेश मिलेगा। हुआवे ने सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजूदा और संभावित उपयोगों को प्रस्तुत किया।
4: All the use cases which we have presented,
3: सभी प्रस्तुतियां अमल में लाई जा सकती हैं। ये मात्र कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि समाधान है। मूल ढांचा से भाषा तक हर क्षेत्र में उचित समाधान प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नवाचार के साथ साथ मजबूत सुरक्षा उपाय भी उतने ही आवश्यक हैं। हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि 2-3 सालों में एआई हर जगह होगा, हमारे दैनिक जीवन में और कंपनियों में भी। इससे हम बच नहीं सकते, बेहतर है इसे अपना लें लेकिन सुरक्षित तरीके से। मॉरिशस की वे कंपनियां और ठेकेदार जो पहले से ही एआई का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए ये सम्मेलन अनुभव साझा करने, नई तकनीकों को समझने और डिजिटल परिवर्तन को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। हम कई पहल के साथ आगे आ रहे हैं, होटल्स में रिजर्वेशन, ग्राहकों को पर्सनलाइज सेवाएं देने के लिए आदि। यदि हम एआई के इस सफर में साथ नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 20 साल पहले जिस प्रकार मॉरिशस में साइबर सिटी विकसित किया गया, उसी प्रकार अब ये तीसरी लहर समझी जा सकती है। इस विषय पर गौर करना जरूरी है। अमेरिका और चीन अपने खुद के एआई विकसित कर रहे हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम स्थानीय एआई को बढ़ावा दें जिसमें सभी मॉरिशन प्रवेश कर
5: पाएंगे।
3: तकनीकी प्रदर्शनों से परे इस समिट का उद्देश्य मॉरिशस में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, विशेषज्ञों के बीच सहयोग मजबूत करना और भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल विकसित करने की दिशा में एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है।
2: मॉरिशस सातवां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटोमी समझौते का हिस्सा है। आज दोपहर बाद बैन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डिप्टी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटोमी समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम हैं। इसका हिस्सा बनकर मॉरिशस विकसित अंतरिक्ष और सैटेलाइट संबंधी टेक्नोलॉजियों में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से लंबी अवधि के लिए जुड़ गया है तथा इन संसाधनों से देश का आर्थिक विकास होगा। और आपको बता रहे थे कि मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत बन रहा है और इस परियोजना के लिए 14 बिलियन रुपए निवेश किए गए हैं।
5: दौरे की शुरुआत परियोजना की जानकारी से हुई। निर्माण स्थल के जिम्मेदार और युवा मॉरिशन इंजीनियरों ने नए दूतावास की योजना के बारे में बताया। इस दौरान अब तक पूरे हुए काम, आगे के निर्माण चरण और इमारत की विशेषताओं की जानकारी दी गई। ये इमारत सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण संबंधी कड़े मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
6: La nouvelle ambassade américaine nous peut construire lui pour qu'il y dure pendant les prochaines 100 ans qui peut venir. Donc, en termes de matériaux qui peut mettre.
5: नई इमारत का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि उसका ढांचा 100 सालों तक मजबूत रहे। निर्माण सामग्री फिनिशिंग सभी कुछ उच्च किस्म की है और टिकाऊ भी।
7: Une exposition internationale avec plusieurs employés qui sont issus de plusieurs pays. Donc, c'est vraiment un échange de connaissances.
5: अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमने अनुभव साझा किया और नई विशेषज्ञता हासिल की। इमारत की छत पर सोलर पैनल्स बिठाए गए हैं, इससे बिजली की बचत होगी। आधुनिक जनरेटर भी है, लीकेज को रोकने के लिए मजबूत ढांचे भी हैं। ये इमारत अन्य इमारतों से अलग है। अब तक परियोजना का 62% काम पूरा हो चुका है। निर्माण स्थल पर 20 देशों के करीब 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो गया है। अब काम अंदरूनी निर्माण और तकनीकी सुविधाएं लगाने के चरण में पहुंच गया है। ये नया दूतावास सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मॉरिशस और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी प्रतीक है। दोनों देश पहले से कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। सारा ट्रॉटमैन ने बताया, मेरे दौरे का मकसद है मॉरिशस और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाना। ये यात्रा इस दिशा में सफल हुई है। मॉरिशस की कंपनियां अमेरिकी साझेदारी के लिए तैयार हैं।
8: Ce bâtiment-là, le projet qui peut réaliser par l'Amérique, cette ambassade, qui pour un an une vision de plus de 100 ans. Ça, l'y démontrer que nos relations avec l'Amérique, les stables et les sustainable. Donc, un symbole de confiance.
5: गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल ने बताया, अमेरिकी दूतावास के इस नए भवन को 100 वर्ष के विजन के साथ खड़ा किया जा रहा है। इस पहल से मॉरिशस और अमेरिका के बीच मौजूद मजबूत और स्थिर संबंध झलकते हैं। ये इमारत विश्वास का प्रतीक है। परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर एक अमेरिकी है। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे युवा इंजीनियर बहुत काबिल है। इस दूतावास के जनवरी 2028 में खुलने की उम्मीद है। इसके होने से मॉरिशस और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही दोनों देशों की साझेदारी भी और प्रगाढ़ होगी।
2: सन 2016 से हेमराज मनोहर ने कम से कम 120 मिलियन रुपए हड़प लिए। जून की शुरुआत में 64 वर्षीय इस पुरुष को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने करीब 40 लोगों को अपनी जाल में फंसाया। ज्यादातर बुजुर्ग विधवाएं रही हैं, जिन्होंने उन्हें पैसे की बड़ी बड़ी रकम दी। हेमराज मनोहर और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 18 शिकार लोगों के बयान दिए हैं। महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है। कल पोटलुई अदालत में संजीव राम

0: आमदनी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की है, लेकिन इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोगियाऊ अपना फैसला सुनाएंगी। एनवायरनमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन इकोसुड द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है। 15 जुलाई को स्थलों का दौरा किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके। इस सत्रह जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैद्रेस वालाइडू की सुनवाई रही। आवासीय संकट न सिर्फ विकासशील देशों के लिए एक मसला है, बल्कि ये 21वीं सदी में सबसे बड़ी इंसानी हकीकतों में से एक है। भूमि और आवास मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक उच्च सतह वाली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे विकासशील टापू देशों के लिए नया अर्बन एजेंडा न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि जीवन है। मंत्री शकील मोहम्मद ने याद दिलाया कि मॉरिशस ने अपने साहिली इलाकों की हिफाजत करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनाई ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो। उन्होंने दोबारा पुष्टि की कि इस सरकार की प्राथमिकता आवास है। और अब विदेश की खबरें। लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। आप नए हुरमुज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान के सैन्य ताकतों को कमजोर कर लिया है। ग्रेट ब्रिटेन में एंडी बर्नाम लेबर पार्टी के नए सरपरस्त बने हैं। सोमवार को वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। एंडी बर्नाम ने कहा कि वो लोगों को नई उम्मीद देंगे और नई राजनीति की बुनियाद भी डालेंगे। पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से गए हैं और 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बालाभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडिचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं। युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई। कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं। उधर वेनेजुएला में मरने वालों की संख्या 4,800 के पार है और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके हैं, राहत कार्य भी किए जा रहे हैं।
1: वेनेजुएला के तटीय राज्य में भीषण भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है, लेकिन हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं। इस भूकंप में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तारो लियाल पेशे से मैकेनिक है। उनका परिवार तो बच गया, लेकिन उन्होंने अपने कई दोस्तों को खो दिया। अब वे बचे हुए सामान की मदद से अपना घर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे परिवारों के सामने सिर्फ घर दोबारा बनाने का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे घर वापस रहने के लिए सुरक्षित है। ये व्यक्ति सिविल इंजीनियर है जो आपात अभियान में शामिल है। इस अभियान में वेनेजुएला का आवास मंत्रालय, यूनिवर्सिटियों के विशेषज्ञ और तकनीकी टीमें मिलकर क्षतिग्रस्त इमारतों का निरीक्षण कर रही है। उनका उद्देश्य ये तय करना है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित लौट सकते हैं या नहीं। भूकंप में 60,000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि लगभग 20,000 लोग बेघर हो गए हैं। हम हर इमारत का निरीक्षण करते हैं और उसे रंगों के आधार पर श्रेणी में रखते हैं। ढांचे की जांच के बाद उसकी स्थिति तय की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इंजीनियरों का कहना है कि अब अगले चरण में भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन तटीय इलाकों में किस तरह की इमारतें बनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ जल्दी निर्माण करना ही काफी नहीं है, बल्कि सुरक्षित निर्माण करना सबसे जरूरी है।
0: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पश्चिम से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान बादल घेराएंगे पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में खास तौर पर बारिश होगी और बाद में रात के दौरान ही मौसम में सुधार आएगा। कल सुबह मौसम सुहाना होगा, दोपहर बाद पश्चिम और दक्षिण में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासतौर पर दक्षिण और ऊंचे इलाकों में, और दूसरे इलाकों में घने बादल होंगे। हवा पश्चिम की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से

0: तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें. अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच में भाग और हमारे तकनीकी साथियों शिव नागिया और लुडोविक जुआंगिया की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार आदाब. एमबीसी के साथ जुड़े रहिए. थोड़ी देर में शोक समाचार सुनिए.
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

Avenue Ollier 98 Havan Sal ke 58 years old Shri Amrit Prabhu Shri Amrit Prabhu jo Ajit ke naam se zyada jane jate the ki mrityu ho gayi hain arthi kal 11 baje कल 11 बजे इनके भाई साजन प्रभु के घर एवेन्यू ओलिये कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रीमेशन टुमारो एट 11 एएम रॉयल रोड रोशदेया में 87 साल के 87 इयर्स ओल्ड श्री चुनुलाल होरदान जो रामदत्त के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी ज्ञानती होरदान के घर रॉयल रोड रोशदेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांगोब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रीमेशन टुमारो एट 11 एएम सिवन चिनिया रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 इयर्स ओल्ड कुंवारी फुलमत मकुन जो विद्वंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर सिवन चिनिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआकूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रीमेशन टुमारो एट 10:30 AM क्लेफो नंबर एक वाकवा में 87 साल की 87 इयर्स ओल्ड श्रीमती गौरी भगवान पैराशी नाम जीता जो श्रीमती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे इनके बेटे राजेन भगवान के घर क्लेफो नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM जिलबेया जूसन स्ट्रीट कॉलिव्यू ओकुले में 79 साल के 79 इयर्स ओल्ड श्री मुनुसामी मारीमुतु जो मामे गौसों के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल ढाई बजे इनके घर जिलबेया जूसन स्ट्रीट कॉलिव्यू ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रीमेशन टुमारो एट 2:30 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है

0: RM3 Radio. Radio.
1: नमस्कार, इस समय शाम के 6:22 हुए हैं और हमारा आपका साथ रेडियो मनोरंजन पर चल रहा है। रेडियो मनोरंजन पर हम आपके साथ रहेंगे रात्रि के 11 बजे तक और इसके दौरान हम आपके लिए फ़िलहाल तो नई सोच कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और मोटिवेशनल गाने हम आप तक पहुंचाएंगे और नई सोच कार्यक्रम में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा। बस यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सफलता ही सफलता आए, सेहत आपकी बहुत अच्छी बनी रहे और मन में खुशियां हमेशा रहे और मन में हमेशा संतुष्टि रहे। स्वागत करते हैं आपका हम नई सोच में।
2: नहीं सो।
1: अक्सर होता ऐसा है कि हमारे दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल को ठेस पहुंचाती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल को दुखी बना देती हैं।

चलिए हम नई सोच कार्यक्रम के जरिए आप लोगों के मन में जो ऐसी बातें उठती हैं उन बातों को हम नया अंदाज देने की कोशिश करें, उन बातों को हटाकर आपके मन में नई सोचों को जागृत करें। चलिए जरा हम सबसे पहले आपको उधार की जिंदगी मूवी का ये गाना सुनवाते हैं।

जो गाना है ये जिंदगी, जो हंसना है ये जिंदगी, तो गमों को भूल जाइए ना, आप अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए ना, होठों पे मुस्कुराहट ले आइए और इस जिंदगी को बड़े प्यार से जीने की कोशिश कर लीजिए। ऐसे में आपके होठों पे वो गाने आ जाएंगे जो गाने जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं।

बेशक जिंदगी में गम आते हैं, बेशक जिंदगी में आंसू भी आते हैं और इन आंसुओं को, इन गमों को छुपाना हमें पड़ता है। जिंदगी यूं ही लेती है इम्तिहान हमारा और इस इम्तिहान की ये बदौलत ही हमें जूझना पड़ता है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है और इस इम्तिहान से गुजरकर जिंदगी को खुशगवार बनाना पड़ता है।

दिल की कई ऐसी सदाएं होती हैं जो हम किसी को सुनाना चाहते हैं और अगर इन सदाओं को सुनने वाला कोई है अपने दिल से सुनने वाला कोई है तो बस आप बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा ऊपर वाले को

उदासी भरे दिनों को ढलाने के लिए हमें हौसले से काम लेना पड़ता है और ये हौसला जितना ऊंचा रहे उतना हमारे जीवन में सुख शांति लाता है।

चलिए हर किसी के लिए एक मुस्कुराहट देने के बहाने हम इस जहां में बस मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट भर दे। औरों के होठों पे मुस्कुराहट देकर आप अपने दिल को कितना खुश, कितना सुकून प्रदान कर सकते हैं, कितनी खुशी प्रदान कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा तो आपको होगा ही होगा। चलिए मुकेश की आवाज़ का ये गाना सुने हम।

अनाड़ी मूवी का ये गाना होगा अंतिम गाना हमारे नई सोच कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों के लिए लेकर आए हम आएंगे हम दिलों की आवाज़।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: दिल से दिल के जुड़े हैं तार हमारे श्रोताओं के साथ। हमारा ये है प्रोग्राम दिलों की आवाज़। आपकी आवाज़ें आती हैं, आपकी आवाज़ें हमारे दिल में उतर जाती हैं और ये आवाज़ें जो आती हैं वो आपके दिल से निकली हुई होती हैं। दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपके दिलों की आवाज़ का हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं आपकी फरमाइशों का। आप रेडियो मनोरंजन पर इस वक्त अपनी पसंद का गाना सुन पाएंगे। बस आप हमें बता दीजिएगा कि कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। बताने का जरिया है मैसेजेस या कॉल। मैसेज करना चाहते हैं 5050-6200, कॉल करना चाहते हैं तो 4028070। यही नंबर्स हैं जिनके जरिए हमारी आपकी ये प्यारी सी क्यूट सी मुलाकात 9 बजे तक चलेगी। तो चलिए आप अपनी पसंद के गानों की फरमाइशें कीजिएगा। हम फिलहाल आपको एक ऐसा गाना सुनवाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाए, आप गुनगुनाना भी चाहें।

सोच के कहां करता है कोई प्यार, प्यार तो बस दिल की धड़कनों की वजह से हो ही जाता है, दिल की धड़कनों में शामिल हो जाता है ये प्यार, ये मोहब्बत जब अपना जलवा दिखाने लगती है तो दिल की धड़कनें ही इसको हमारे फीलिंग्स तक पहुंचाती हैं। तो चलिए दिल की इन धड़कनों को आगे बढ़ाते हुए हम पेश करते हैं ये फरमाइश हमारे पहले प्रोग्राम की, ये पहली फरमाइश है और ये फरमाइश मिल आई है सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। तो ये वाले के सूरज शर्मा सजादा जी हम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनके लिए चलाएं फिल्म हसीना मान जाएगी का ये गाना। चलिए ज़रा हम सुनते हैं ये गाना उनकी तरफ से उनके बेटे के लिए और पूरे बिसेसर परिवार के लिए और हमारी MBC रेडियो के पूरे परिवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज शर्मा से ज़्यादा जी। चलिए ज़रा ये वो गाना है जो पुराना सा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, स्वीट सी ये आवाज़ हर किसी को पसंद आएगी।

ये है प्यार का साया मूवी का गाना और प्यार का साया मूवी का ये गाना हम सुदेवी जी की पसंद पर बजवा रहे हैं। सुदेवी जी ने इस गाने की फरमाइश वाकवासी की है, उन्होंने ये गाना मांगा है त्रियोली की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए और आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवी ना, मालिका के अनुषा, किरण और पूरे राम रतन परिवार के लिए। और थैंक यू वेरी मच हमारी टीम के लिए मांगने के लिए, हमको तो ये गाना बड़ा पसंद आता है। आपके लिए, आपकी इस फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी। और वैसे भी हमारी आपकी ये दोस्ती भी तो होती है, ये दोस्ती हमारी कभी नहीं बदलने वाली, बस इस दोस्ती पे हम तो भरोसा रखते हैं, आप भी भरोसा रखिएगा।

चलिए जरा अब हम गिरीश हरलोल जी की पसंद का गाना पेश करते हैं आपके लिए। गिरीश जी को सुनना है बरसात मूवी का गाना, चलिए जरा हम भी सुने उनके साथ साथ। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कुमार सानू की आवाज़। चलिए जरा ये आवाज़ भी, ये गाना भी, लिरिक्स भी बहुत ही लाजवाब है, सुनते हैं गिरीश हरलोल जी की पसंद पर।

और चलते चलते हुजूर हमारी आपकी इस मुलाकात में फरमाइशों का जिस सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले में आपको सुनवाते हैं लव मैरिज मूवी का ये गाना। और इस गाने की फरमाइश आयशा जी ने की है, उन्होंने ये गाना मांगा है अपने हस्बैंड अमजद जी के लिए। तो चलिए, आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ रहे।

इस बार जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आशा भोसले की आवाज़ में किस्मत मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं अनीता जी के लिए। अनीता जी जो रहती हैं फ्लिक ऑफ लक, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पति राज के लिए, बेटे अंतिश के लिए और अंकुश के लिए, उनकी बहू मनीषा अशिमा के लिए, पोती हिमेशा के लिए, आदिया के लिए और पोते अंश के लिए। तो चलिए रेडियो मनोरंजन के हमारे सभी श्रोताओं के नाम भी करते हैं ये गाना फ्लिक ऑफ लक की अनीता जी की तरफ से।

हमारे श्रोताओं की कॉल्स आ रही हैं, हमारे श्रोताओं के मैसेजेस आ रहे हैं और अभी कॉल पर हमारे श्रोता हैं, उनसे बात कर रहे हैं हम, बस उनको इंटरप्ट करके आप तक पहुंच रहे हैं। हम इस समय 7:43 हुए हैं और धूल का फूल मूवी का गाना लेकर आए हैं हम, जिसकी फरमाइश तायाक से रफीक मोहित जी ने की है। तो चलिए रफीक जी के नाम ये अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

चलिए इस बार ललिता जी की पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं। ये है दिलों की आवाज़, ललिता जी के दिल की आवाज़ हम तक पहुंची और ये उनकी आवाज़ का रिजल्ट हम उन तक पहुंचाते हैं। जी मदर इंडिया मूवी का ये गाना ललिता जी ने थ्रियोले से मांगा है अपनी बहनों के लिए, सुदेवी, ज्ञानी, देवीना के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, आत्मा राम जी और हरीश जी के लिए, शुक्लान मौसी, माला राम चवन, उषा लोकाना के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। चलिए ज़रा सुनते हैं मदर इंडिया का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और साथ ही साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में भी।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: मनोरंजन तो आपका हम करेंगे ही करेंगे। रेडियो मनोरंजन आपके एंटरटेनमेंट का बड़ा ही प्यारा सा सिलसिला छेड़ रहा है। आपके दिलों की आवाज़ हम तक पहुँचे, आपके दिलों की आवाज़ सुन के हम पेश करें वो गाना जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए इस बार हम पेश करते हैं एस जानकी का गाया हुआ ये गाना अमित कुमार के साथ। इस गाने की फरमाइश सचिन जी ने की है। सचिन जी ने पोपड़े मुझसे ये गाना मांगा है, जिसे हमने लिया है मैं तेरे लिए मूवी से।

8 बजने वाले हैं और हमारा आपका साथ तो 11 बजे तक चलने वाला है। अभी तो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए दिलों की आवाज, और इस बार हम दो बदन मूवी का ये गाना पेश कर रहे हैं अब्बू जी की पसंद पर। अब्बू जी ने दो बदन मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मांगा है, और उन्होंने विशेष तौर पर ये गाना रकीबा जी के लिए मांगा है। उनके लिए मामू अब्बू बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं ताकि उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए। तो अब्बू जी की तरफ से ये गाना आफेज, असलम, आयाज, अज़ायान, ज़ाहिरा, कलाचुती, रेज आपी जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए पेश करते हैं।

और इस बार जो गाना आप सुनिएगा वो होगा श्रीनल जी की पसंद, और श्रीनल जी ने इस गाने की फरमाइश की है भैया श्रवण भाभी कृति अभिनव कियान अन्नाव्या के लिए तिलक फैमिली के लिए, और स्विट्जरलैंड से सुन रहे हमें सुन रहे अंतिश राम सरन जी के लिए। सो हियर वी गो।

0: आंखों की गहराई है ये हुजूर जो भी डूबा चला जाता है उसी को इन आंखों का निशान नजर आता है
1: RM3 Radio Radio Radio
0: रेडियो मनोरंजन आप लोगों के लिए लेकर आया है दिलों की आवाज़ और दिलों की आवाज़ में इस बार जो गाना सुनिएगा वो होगा मुझे कुछ कहना है मूवी से लिया गया अलका याग्निक की आवाज़ है चलिए ज़रा हम सुनते हैं गुलशन जी की रिक्वेस्ट पर गुलशन जी ने ये गाना मांगा है ममा प्रभा के लिए बहन दीक्षिता के लिए आयशा के लिए पूरे भोला परिवार के लिए और हमारी हमारी सखी हंसिनी के लिए

और 8:18 हुए हैं, आप लोगों के नाम करते हैं हम झूमरू मूवी का गाना। झूमरू मूवी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, पर सुनने की फरमाइश उषा जी की है। वाकवा की उषा जी ने सुनना चाहा है ये गाना और सुनवाना भी चाहा है, सुनवाना चाहा है उन्होंने अपनी बहनों को, 3 बहनों को और अपने 5 भाइयों को। तो चलिए साथ मिलके उषा जी, उनके भाई, उनके बहनों के हम भी सुनते हैं ये गाना।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: और जहां भी होंगे आप, एंटरटेनमेंट आपका जिस तरह हो रहा है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे, यही उम्मीद है हमारी। ये एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए, हमारी सभी श्रोताओं की बदौलत हम पेश कर रहे हैं। और अभी जो गाना हम उम्मीद मूवी से ले रहे हैं, वो गाना हम पेश कर रहे हैं बाहोश गुडलैंड्स की संध्या जी की तरफ से। संध्या जी ये गाना मांग रही है अपने पति विनोद जी के लिए, सिजल, रहना, निर्वय, नेहा और आकाश के लिए, और आप सभी के लिए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। चलिए सुनते हैं हम मोहम्मद रफी की आवाज़।

जहाँ भी होंगे आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से एंटरटेन होइएगा. इनफैक्ट अभी जो गाना हम आपको सुनवाएंगे वो होगा साथी मूवी से लिया गया. साथी मूवी के गानों में आप मुकेश की आवाज़, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ सुन सकते हैं. तो चलिए इस पर डुएट ही सुनवा देते हैं आपको. डुएट की फरमाइश हम से की है फुलवंती जी ने वाकवा से. उन्होंने ये गाना अपने पति देवानंद जी के लिए मांगा है, अपने बेटे उशान के लिए और बेटी भावना के लिए.

रूठना मनाना मोहब्बत का एक बहुत ही स्वीट सा हिस्सा होता है, एक बहुत ही स्वीट सा मोमेंट होता है। तो चलिए सलाम नमस्ते मूवी का ये गाना सुनते हैं हम सोनू निगम की आवाज़ में, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं मौदाल बेया के प्रीतम जी की तरफ से उनकी रूठी रूठी सी पत्नी संध्या जी के लिए। ये है मोटिव मनाने का। तो चलिए ज़रा बड़े प्यार से मना रहे हैं पतिदेव जी, आप मानते जाइएगा संध्या जी।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: रिहाना जी फेनिक्स से हमें सुन रही है, हमारा साथ दे रही है और हमारे सभी सुनने वालों के लिए मांग रही है बादल मूवी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और हमारे श्रोताओं के बीच हैं हरीश जी बबासन से, हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे सभी सुनने वालों के नाम आशिक मूवी का ये गाना कर रहे हैं जो मुकेश की आवाज़ में है।

और पोर्टलिस के हमारे श्रोता इब्राहिम जी सुनना चाह रहे हैं एक नज़र मूवी का गाना मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

चलिए खत की बात करते हैं। खत में जो मैसेज मिलते हैं मोहब्बत भरे, उनसे दिल की धड़कनें कैसे बढ़ जाती हैं। चलिए जरा सुनते हैं हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। और इस गाने की फरमाइश हमसे प्रियक्षा जी ने की है, पापा संजीव वर्मा रेशमा के लिए, फ्रॉम कैथोबोन।

0: RM3 Radio. Radio.
1: खत में मैसेज भेजने की बात चाह

धड़कने लगे। अभी जी ने भी कुछ यूं ही बयां किया है कि खत लिखने से मोहब्बत का इजहार कितना प्यारा सा क्यूट सा लगता है। चलिए ज़रा हम बेखुदी मूवी का ये गाना सुनते हैं जिसमें खत का ही जिक्र है, खत में उनका नाम लिखने का जिक्र है और ये गाना अभी जी मांग रहे हैं अपनी मंगेतर स्नेहा के लिए आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ में।

करते हैं हम। बस थोड़ी ही देर में आपके लिए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम पेश करेंगे और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हम रेडियो मॉरिशस से पेश करेंगे जो रेडियो मनोरंजन पर भी प्रसारित होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं जहाँ हम भाई सुरेखा तो हर साथ ही देवत हैं और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो हर खातिर लेकर आल हैं और जहाँ हो जहाँ हमके कार्यक्रम में तो लोगों भाग लिया जा तो लोगों बोला जा कौन कौन गीत अपनी सुनवाए जाए कार्यक्रम में तो हर फरमाइश के गीत है पाँच 251-7005 ये नंबर है मिसाज भेजे के और 402-8085 ये नंबर है कॉल करेंगे तो जरूर हमने के कार्यक्रम में कोनो प्रकार से भाग लेवे कुछ बजा लिया जा मिसाज भेजा जा फिर या फिर कॉल करिया जा हमने के कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं जा अभी हमने गाना सुना था सुनब जा बिल बिल दे मौसी भोजपुरी बाजा बाजी बॉयज के कलाकार लोग के गावल गाना है और ये गीत हमने से मंगले हवन विश्वानी दुमन जी वाकुआ से ये गीत मंगले हवन अपन बहिन इंदिरा शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर

मौसी और मामी बेला थवन नानी दा दल पिठा पकावा थवन चला हमनी सबके मिलजुल के खाई चली जा। चला आगे बढ़ते बढ़ते मतलब दल पिठा खाईते खाईते आगे बढ़ी जा। और ये रोशन सदा सिंह जी के गावल वंदना अमर सुना सुनी जा। गाना हमनी से मंगले हवन बहुत आल बेस से अनीता जी करुणा के संगे अमृता के संगे और पूरा परिवार के संगे। तो चला सुनी जा हमने वंदना हमर सोना।

बंतना के बाद चला सुनी जामनी सुग्रीम किस्तू जी के गावल गाना और रोशन सरा सिंह जी के गावल गाना के बाद जब सुग्रीम किस्तू जी के गावल गाना सुना जाता हमने के ध्यान में आई कि हमने के चिंता ना जाही करे के चिंता से तो गड़बड़वे हो जाला बस चिंता करला के बदले हमने के समस्या के समाधान ढूंढे में अपना ऊर्जा लगाए के चाहेला। चला ये गाना हमने सुनब जा आत्माराम जी के पसंद पर बिलिया से आत्माराम जी अपन बहन लोग खातिर गाना मंगले हवन बहन सुदेवी बहन ललिता बहन छोटी और बहन प्रभावते जी खातिर और बेलिया के पूरा इस परिवार खातिर

पैक पैक कुछ हलवा लेते हो ये गाना हमने भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के कलाकार लोग के गावल सुना थे जा और ये गाना हमने से सूरज शर्मा सजादा जी मंगले हो वन पूरा विशेष सर परिवार खातिर प्रिय लेके

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। माँ बाप के मूल पहचानी लजा हमने, और माँ बाप के मूल पहचान के ही हमने गीत के पसंद करी लजा गीता गजाद हर जी के लिए हवन गाना, और ये गाना हमने सेफली कॉन्फ्लाक के अनीता जी मंगले हवन अपन संगत्यालो खातिर इंदिरा श्यामा मीरा सिनंद कविराज साधना मालिनी कविताप और कविता और हमने के सब सुने होला लोग के नाम तो चला सुने जा हमने गीता का जाधर जी के गावली गीत अनीता जी के पसंद पर।

चलो अब हमने शांति जी के पसंद के गाना सुनी जा शांति जी त्याहूर से मंगले हवन ज्वाला बिजाधन जी के गावली गाना सोना के गहना चलो सुनी जाए गाना हमने ज्वाला बिजाधन जी के आवाज में और ये गाना शांति जी दागोचे के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर मंगले हवन और ये अप्पा दागोचे के अपन भगीना ओम खातिर

आज तो सुखे रात बाग कई जगह पर गीत गवाए हुआ थो तो चला संगे संगे मिलके गीत गवाए में चली सा चला जा बिजमावती संपत जी के गावली गाना सुनी जा अभी गाना हमसे मंगले हवन मीरा बाई दरमिया जी गाना मंगले हवन मौदाल बेहस और पाद्या परिवार दरमिया परिवार खातिर अपन बेटा अपन बेटी अपन दमाद खातिर और अपन पतिदेव खातिर मंगले हवन गीत

ये गाना है कुणाल बाबूलाल जी के गावल और ये गाना है कुंगुमा के विमला जी खातिर गांव गोप के उनकर बहिन सुनीता मंगले हवन ये गाना अपन बहिन के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चला अभी अपनी सुनी जैसा भावती दुमन जी के गावल गीत, ई गाना हमने बजवाओ लज्जा ललिता जी खातिर। ललिता जी मंगले हवनी गाना अपन बहिन सुधी।

देवी ज्ञानी देवीना खातिर छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी और हरीश जी खातिर फिर सुखलाल मौसी खातिर मालाराम जवन उषा लोकाना खातिर।

हमनी के भोजपुरी तड़का में चला तड़का लगाएला जहाँ हमनी लंगड़ो गाना संगे भोजपुरी बजा बजे बॉयज के गाना है और ये गाना हमनी से मंगले हवन श्रवण जी रहे लन लॉन्ग माउंटेन ये गाना अपन पूरा परिवार खातिर मंगले हवन विशेष तौर पर अपन दादी माँ खातिर मंगले हवन श्रवण जी

अभी गौबे से रतन जी हमी के टेलीफोन कर लन और मंगलन गाना अनिल सिंह रमेश सर जी के गावल और मंडिल अमृता जी के गावल यह दाल पकेली भात पकेली शायद आज रतन जी दाल भात पकेले और चल रतन जी के नाम करी चाह हमी गाना उनका बगल से उनका पत्नी करुणा के नाम

मीरा दिनों जी के गावल गाना चला सुने जा हमने सुदेवी जी के पसंद पर बाकवासी सुदेवी जी मंगले वन गाना तो योले के दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मानिका के जयश्री रामलतन परिवार भिखारी परिवार खातिर

भोजपुरी के बोल बाला रहेला और जमनलाल चड्डू जी गईले हवन भोजपुरी कितना अच्छा लगेला ये गाना हमने बजवावत है जाज सुनीता जी के पसंद पर इस गाना सुनीता जी लॉन्ग माउंटेन से मंगले हवन अपन पति राज के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: चलते चली जा हमने के भोजपुरी तड़का, हाँ हमने के बाप दादा की बोली होला तड़का, हाँ बाप दादा की बोली हमने के भोजपुरी बोली। विष्णु माफ करिया विनोद सीता जी, विनोद सीता जी बात बोल बोल के बड़ा हम सब को के खुश कर देवेला कि बाप दादा के हमने के ई बोली भोजपुरी बोली बड़ा सुहावन है। ई गाना हमने बचवावत है जा श्रीमती जी खातिर, सुयाग से श्रीमती जी ई सुहावन बोली के गाना सुने खोजत हवन, अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन ई गाना।

चला हमने के एक कार्यक्रम में हमने ज्ञान महिपत लाल जी के गावल गीत सुनवा थे जब हम लोग के और ये गाना हमने से बहुत शरीर से धानी जी मंगले हवान चला धानी जी को बहुत बड़ा फैन हवन ज्ञान महिपत लाल जी के चला सुनी जाए गाना बड़ा उमदा गाना बा

सुरेश जी की फरमाइश है किशोर की म्याज के पोपुरी गाना चला सुनी जा हम सुरेश जी की फरमाइश पर ही गाना उनकर पत्नी राधिका के नाम

रानी जी सुने खोजो थवन गीता गजाधर जी के गावल सिंधी के हिचके वाला गाना। रानी जी गाना मंगले हो वन अपन राजा यानी कि अपन पति विवेक जी के नाम बाकवा के ई हमने के श्रोता लोग ई गाना अपन दादी माँ के नाम भी कर

अब जमाल कुदुले क्याल है जहाँ हमने किशोर किमिया की आवाज में और इस किशोर किमिया जी की आवाज में ये गाना हमने बचवाओ थे जहाँ राकेश जी खातिर राकेश जी रहे लन मोताए ब्लॉश और मंगले हवन ये गाना अपन पूरा परिवार के नाम खासकर अपन दोस्त विराज के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चला भी गो ललना सुन लेला, जहाँ हमने सोना नोयन जी के गावल, और ललना हमने सुनब जा विमाला जी के उनकर घर में जिन परियाल बा उकर नाम, उनकर परी के नाम और उनकर पति के नाम, मतलब विमाला जी और प्रीतम जी, माता पिता बनल हवन जा सोना नोयन जी के गावली गाना, उनकरा पड़ाव पर अभिनंदन कहे खातिर।

जैसा के संगे संगे चला हमने कुणाल हीरेलाल जी के गावाली गहरासन गाना भी सुनी जा। ये रही अंतिम गाना हमने के कार्यक्रम के भोजपुरी तड़का के, और ये कार्यक्रम के बाद सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीज

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और अग्निशा का प्रणाम। मैं हूँ आपका दोस्त जो साथ निभाने आई हूँ आपके सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे देखा जाए तो कभी कभी हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, लेकिन एक पुराना गीत बस 2 मिनट के लिए ही सही हमें रोक देता है, मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, महसूस करने का भी नाम है। तो आज थोड़ी देर के लिए हर टेंशन को साइड में रखिए और इन हसीन नगमों के साथ दिल को सुकून दीजिए। ये है सुनहरे पल, जहां हर गीत एक नई याद बनकर आपके दिल में उतर जाते हैं।

वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं वो महसूस किए जाते हैं। वैसे हर लफ्ज में सच्चाई है, हर सुर में कहानी है और हर धुन में एक एहसास। और इसीलिए तो सालों बाद भी जब ये गीत बजते हैं ना, हमारे दिल खुद ब खुद उनके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। किनिशा आपका साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है आपका सुनहरे पल। और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर यादों का एक और खूबसूरत सफर तय करेंगे। क्या ख्याल है आपका?

वैसे दोस्तों आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही गीत हमेशा के लिए चुनना हो तो वो कौन सा होगा? शायद उस गीत के साथ कोई याद जुड़ी होगी, बहुत ही खास याद। मेरा मतलब है कोई अपना जुड़ा होगा या कोई खूबसूरत लम्हा। आज के सफर में शायद वही गीत आपको फिर से मिल जाए। गिनेश आपका साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में, और हम चाहते हैं कि आप भी शिद्दत से हमारा साथ दें। आराम से बैठ जाइए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक, आपके लिए स्पेशली ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: है मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात क्या है? रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सिर्फ आवाज नहीं होती है, लेकिन हर आवाज के साथ एक तस्वीर भी बन जाती है। आज जब ये गीत बजेंगे, कोई अपनी माँ को याद करेगा, कोई अपने पापा को, कोई बचपन को, या शायद कोई अपनी पहली मोहब्बत को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गीत कभी पुराने नहीं होते, यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, और उनको ताज़ा करने के लिए हम हैं ना सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

देखा जाए तो हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है, है ना? लेकिन पुराने बॉलीवुड के गीत एक ऐसा दौलत हैं जो हर जेनरेशन को पसंद आती हैं। दादा दादी भी इन्हें पसंद करते हैं, मम्मी पापा भी, और आज की जेनरेशन भी इन गीतों की सिंप्लिसिटी और मेलोडी की दीवानी है। तो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस सुनहरे दौर को सिर्फ सुनहरे पल में।

0: एक घंटे का ये सफर कैसे बीता वैसे दोस्त मुझे वाकई में पता नहीं चला क्योंकि गीत इतने खूबसूरत हमने पेश किए हैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए तो चलिए जी बाकी जो हमारे दोस्त अभी भी काम पे हैं बो कुराज टू यू जो अभी सोने की तैयारी में है गुड नाइट टू यू और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए हमें तो जाना पड़ेगा ना ताकि हम वापस आ सके फिर से एक बार आपका साथ देने के लिए सुनहरे पल में शुभ रात्रि शब बाखैर मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स
1: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: हाय, सो वी मीट अगेन। अजीब इत्तेफाक है, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around, Yora. Anyways, it was nice to meet you.
4: कौन है आप?
3: इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: My, this is Radio Voices.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: चक लो अपने ढोल बाजे नाले कस लो पीपनिया है कि ना
9: वन टू थ्री